0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने

सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ठीक 6:15 ते तुसी सर्वन करोंगे प्रोग्राम अमृत वेला। 7 बजे दा समा रहेगा प्रोग्राम सजरी सवेर दा, जिस तहत अज सिलसिला होएगा मॉर्निंग क्विज। 8 बजे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन, 8:15 ते अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन तुसी सुनोगे आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। 8:30 होणगे पंजाबी विच खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों। 8:40 ते लैके आवांगे तुहाडे लई प्रोग्राम महक पंजाब दी। 9 to 10 तक रिले करांगे विविध भारती मुंबई दे प्रसारण, जिस तहत 9 बजे सुनोगे प्रोग्राम चित्र लोक, 9:30 प्रोग्राम आज के फनकार।

8 बजे आनंद माणोंगे प्रोग्राम रंगे गजल दा 8:45 ते समाचार संध्या यानी कि हिंदी विच खबरां ते 9 बजे अंग्रेजी विच खबरां सुनोगे आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो ते 9:15 तो लेके 11 बजे तक रिले करांगे विविध भारती मुंबई दे प्रसारण जिस तहत 9:15 बजे प्रोग्राम आपके लिए 9:30 बजे प्रोग्राम छाया गीत 10 बजे प्रोग्राम आज के फनकार ते 10:30 होएगा प्रोग्राम ढलती जाए रात ते 11 बजे होएगी जी साड़ी आज दी प्रसारण सभा दी समाप्ति। आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 MHz ते इस वक्त स्टूडियो दी कड़ी समा दस रही है 6:15 दा हुन वेला है प्रोग्राम अमृत वेला दा।

आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 MHz ते इस वेले तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।

कुछ कुछ खाली कुछ कुछ भरा सा है, कुछ कुछ खाली कुछ कुछ भरा सा है, जी लो जी भर के ये जीवन जरा सा है।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल ते वेरी गुड मॉर्निंग दे नाल आ गई हां जी मैं दीपा छाबड़ा ते प्रोग्राम दा नाम है जी सजरी सवेर ते सजरी सवेर तुहाडी असी सोहनी बनानी है सवेर तुहाडी खूबसूरत बनानी है तुहाडे नाल मिठिया मिठिया गल्लां करके तुहानू खूबसूरत गीत सुना के मॉर्निंग क्विज तुहाडे नाल करके ते होर बहुत सारा कुछ है अज सजरी सवेर दे विच तुहाडे लई खास बने रहो 8 बजे तक दीपा छाबड़ा दे नाल।

0: कार तो काम करो, वादू तनखा बस एक क्लिक पे, वाह जी वाह।
1: फसी
2: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो, आरबीआई कहंदा है
3: जानकार बनो सुचेत रहो।
4: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 25 जुलाई दिन शनिवार शाम 5:30 बजे तुसी सर्वन करोंगे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे अंतर्गत सिलसिला अरदास दर्शन रूप अभ्यास।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: अपने इमीग्रेशन सेंटर विच दित्तियां जाण वालियां सेवावां जिवें स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, सुपर वीजा, वर्क परमिट ते पीआर संबंधी जेकर तुसी इलाके दे लोकां नूं जाणू करवाउणा चाहुंदे हो तां तुसी आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे कमर्शियल विभाग दीआं सेवावां लै सकदे हो। साडा संपर्क नंबर है 78-379-63-306। ईमेल आईडी है aarfm.bti@gmail.com। संपर्क नंबर एक बार फिर नोट कर लो 78-379-63-306।
0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
3: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है सजरी सवेर सिलसिला मॉर्निंग क्विज शुरू हो चुकी है, पर हले तक कॉल जदों आती है तो आ के ही पता नहीं लोग मेरी आवाज़ सुन के डर रहे भी दीपा औखे सवाल नहीं लेके आई, बड़े सौखे सौखे सवाल लेके आई है। तो हमेशा जी मेरी गुजारिश होंगी है साढ़े स्रोतियां नूं कि कोशिश करन कि जेडे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे वह भाग लैन, तो मैनू लगता है इस करके शायद साढ़े जोड़े बुजुर्ग है सियाने है वह मेरी आवाज़ सुन के कट रहे हैं। तो कोई गल नहीं जी, थानू सुनावांगे कि अगला स्रोता कौन है, पर उदों तक तुसी सुनो एक गीत।

0: थोड़े प्रोग्राम का बड़ा ही मतलब सुकून देने वाली आ रही है
1: अच्छा
0: मुझे। जी
1: वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया रामधारी जी, तुसी किया, क्योंकि सुकून अगर किसी ने उसी दे सकते हैं ना, तो मैनूं लगता है कि इस तो वड्डी तो कोई गल नहीं हैगी, है ना
0: जी जी
1: जी।
0: बिल्कुल
1: जी तो तुहाडे पहले सवाल का जवाब तुहाडा सही हो गया, तो तुसी हुण मैनूं दूजा दसना है जी। तुसी दसना है कि हाइड्रोजन ट्रेन चली है इंडिया की पहली
0: जी
1: जी, तो उसका तुसी नाम दस देना मैनूं।
0: नाम
1: उसका नाम बताना आपको
0: बताना है तो हम बताएंगे
1: नहीं
0: चल
1: हाँ जी नहीं पता,
0: रही है।
1: चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो तुसी साडे प्रोग्राम दे विच आए, बहुत बहुत शुक्रिया, ते इसका जवाब तुसी रेडियो ते सुनियो, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दे विच भाग लैण लई। ते दोस्तों ये सन जी रामधारी जी, जिहड़े कि पहले सवाल दा जवाब दे के अद्धे विनर बन गए सी, पूरे बनन ही वाले सी, पर ना इन्हां नूं भुल गया या इन्हां ने ध्यान नाल नहीं सुनिया। ते हाइड्रोजन ट्रेन जिहड़ी इंडिया दी पहली चली है, उस दा नां है जी नमो ग्रीन रेल। ते बड़े साडे ना माण वाली गल है कि साडे देश दे विच ये ट्रेन चली है, ते साडा देश तरक्कियां करदा रहे, ये साडी सारिआं दीआं साडे देश लई दुआवां ने।

0: तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, बिल्कुल श्रोते हो तुसी साडे सब कुछ हो, है ना। ते समा 7:32 दा प्रोग्राम सजरी सवेर सिलसिला मॉर्निंग क्विज, ते होस्ट अज दी है जी दीपा छाबड़ा। ते अगला कॉलर कौन है ये असी चेक कर लेने। हेलो
1: हेलो। हाँ जी,
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हो।
1: मुझे सिंह बोल रही। हेलो।
0: हेलो,
1: कार
0: हाँ जी हाँ जी, नमस्कार। नाम
1: जी,
0: ना दसो अपना।
1: मुदित
0: मुदित सिंह। मुदित सिंह कितों बोल रहे हो। हेलो,
1: सिंह।
0: कितों बोल रहे हो।
1: कोटपुरे
0: कोटकपुरे तो। ते की कर दे हो।
1: तो मैं बीसीए कर रही।
0: बहुत वधिया बहुत वधिया। ते रेडियो सुनते रहने हो।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: हाँ, ते सवाल दा जवाब दे दोगे।
1: जी, हाँ जी, हाँ
0: स्माइल आ गई चेहरे ते।
1: जी, आ
0: बहुत वधिया, ते स्माइल आ गई तो विनर तो आप बन ही गए फिर, है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: चलो तुसी मेरे पहले सवाल नु ध्यान नाल सुनियो, ध्यान नाल ते ध्यान नाल ही उसका जवाब दियो, है ना। जल्दबाजी ना करियो। तुसी मैनु दसना कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा सी, है ना, पिछे जे 2026 दा।
1: हाँ
0: हेलो,
1: जी, हाँ जी, हाँ
0: ते
1: जी,
0: उस दे विनर कौन बने ने, केड़ी टीम उस दी विनर बनी है। हेलो,
1: हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट होल्ड करो।
0: 1 मिनट होल्ड नहीं कराना। ना ना ना ना ना। ते इसका जवाब तुसी हुन तुसी अपने रेडियो तो ही सुनियो, क्योंकि 1 मिनट वाला इतने कोई काम नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया
1: पेन
0: तुसी
1: पेन
0: प्रोग्राम च आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मिनट।
0: ते दोस्तों मुदित जी कहंदे 1 मिनट ना जी ना, अजकल तो 1 मिनट वाह वाह हुंदा है, आपां गूगल ते सर्च कर सकते हैं, पर मैं

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਤੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।

0: हाँ सीखा मैंने जीना, बिल्कुल जी, मैंने सीखा जीना रेडियो पे आके अपने लिसनर्स यानी कि अपने श्रोतावां नाल गल्लां करके मैं जीना सीख लिया जी। मैनूं बहुत वधिया लगदा है अपने श्रोतिया नाल गल्लां करनियां ते उहनां दियां गल्लां सुननियां ते देखते हैं जी अगले श्रोता कौन ने जी। हैलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: वेरी गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रहे हो
1: मैडम परशुराम नगर बठिंडा तो प्रवीण लता सिंगला। थैंक
0: जी? प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है सिलसिले दे विच।
1: यू जी।
0: उथो ना साडे टावर नू है ना, बड़ी आसानी नाल फोन मिल जांदा मन लगदा है ना।
1: पता
0: बाकी
1: नहीं
0: मैं
1: जी।
0: एक वो कहंदे है ना, जदों असी किसे चीज नू शिद्दत नाल
1: दिल में
0: चाहने आ
1: दिल की
0: तां है ना।
1: चाह हुंदी है ना जी, जदों
0: जी जी जी
1: चाह
0: जी
1: नूं राह हमेशा मिलता है
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: ना।
0: जी, बहुत वधिया गल तुसी कीती। ते हुन प्रवीण जी मैं तुहानू क्वेश्चन पुछ लैनी है ना, ते क्वेश्चन
1: औखा
0: दा
1: जो पूछे
0: तुसी
1: जी,
0: जवाब
1: पर
0: देना है, ताड़ियां बजवाउणियां, फिर दूजे क्वेश्चन दा भी तुसी जवाब दे देना है ना।
1: सौखा जो पूछ लियो।
0: ओ मैं तो कट
1: ठीक
0: के सौखे सौखे ले आनी हुन्नी आ। चलो पहला क्वेश्चन है मेरा कि कारगिल विजय दिवस असी कदों मनाने हैं
1: कारगिल विजय दिवस जी
0: जी?
1: 22 जुलाई।
0: ओहो, तुहाडा उत्तर
1: ओ
0: गलत
1: भाई
0: हो गया। कोई गल
1: गलत
0: नहीं
1: हो
0: कोई
1: गया।
0: गल
1: नहीं जी, 22 के 23 जुलाई है। क्या
0: नहीं जी, नहीं। चलो
1: दिसंबर
0: बस हुण तुक्के लाई चलो, हुण तां
1: दिसंबर
0: आंसर गलत हो ही गया जी। हुण तां तुक्के जिन्ने मर्जी लाई चलो जी तुसी, है
1: हाय। चलो
0: ना।
1: कोई गल नहीं जी, फिर जे हर बारी आपां सफल हो जाइए तो फिर असफलता कितने जाऊगी।
0: हाँ कहंदे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो तुसी कोशिश
1: हाँ
0: करते रहो, विनर बनोगे पक्का
1: डिगना कदे वास्ते है, डिग डिग के
0: जी।
1: उठो।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: हाँ, डिग डिग के उठना है, ते अद्दा ही चलना सीखना है अपा, है ना जी।
1: जी
0: प्रवीण जी
1: हाँ
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गल तुसी साडे नाल सांझी कीती, तुसी साडे प्रोग्राम दे विच आए, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी थैंक यू।
0: जी। जी दोस्तों, ए सी जी प्रवीण जी, जिन्हां नूं कारगिल विजय दिवस नहीं पता सी, पर कोई गल नहीं, उन्हां नूं कहो कि डायरी खोलन ते लिख लैन कि कारगिल विजय दिवस असीं मनाउने आ जी 26 जुलाई नूं।

जी प्रोग्राम सजरी सवेर सिलसिला मॉर्निंग क्विज जारी है। इंतजार है मैनू अपने अगे अगले कॉलर दी। ते एक शायरी जी मैनू नजर आ गई अजकल दे हिसाब दी, ते मैं क्या चलो उदों तक ओही पढ़ दिंदे आ। कहिंदे दुनिया में है तेल की लड़ाई और इंडिया में नीट की लड़ाई, बाढ़ भी आई और ट्रेन भी चली और स्पेन ने वर्ल्ड कप जीत ली।

आकाशवाणी एफ एम बठिंडा 101.1 MHz से समा 7:59 तो 31 मिनट का ठीक 8 बजे तुसी सुनोगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन समाचार प्रभात 8:15 अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो 8:30 पंजाबी विच खबरां होणगियां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो खबरां लई कुछ पल करदे हां जी इंतजार।

0: खर्च के पैसे दो हसबैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
6: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
7: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
8: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
5: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर

0: कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
1: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच शामिल हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
2: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखे ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रीशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compass. India's national education policy

0: reflects this vision by promoting innovation, research, creativity, and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
2: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज
3: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
2: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला, कार्रवाई हुई, फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से

0: मोहित चौहान को अभी आप सुन रहे थे तमाशा फिल्म से। इरशाद कामिल ने इसे लिखा और A.R. रहमान का संगीत।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: टू स्टेट से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: अच्छा तेरिया दुआवां लगिया रब तो

0: श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। किस्मत कनेक्शन फिल्म का नाम था। शबीर अहमद ने इसे लिखा। प्रीतम का संगीत।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कुमार ने इसे लिखा और शारिब तोशी का संगीत।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन

0: आज के फनकार।
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।
2: अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा तड़प

एक ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

हिंदी फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928

0: में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।
1: कुछ समझ नहीं आ।

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

0: गोपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज, और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।
1: प्यार की राह दिखा दुनिया को, प्यार की राह दिखा दुनिया को,

इसके ठीक बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जी एस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

सन 1963 में जी एस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूक कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

और फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना।

इसकी बात आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहाँ एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं, माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था, माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब।

जी एस कोहली के संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जीएस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जीएस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जीएस कोहली की अपनी भी शैली है, कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जीएस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्जान का लिखा हुआ है।

60 के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जीएस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संगदिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जीएस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जीएस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है।

0: 25 जुलाई 1996 को जीएस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जीएस कोहली चले गए, पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे। कभी
1: हुणे तुसी सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी ट्यून कीता आकाशवाणी FM बठिंडा। इस वेले साडी स्टूडियो दी घड़ी ते समा 9:59 ते 30 सेकंड दा हो रहा है। ठीक 10 बजे तो तुसी सुनोगे अगले प्रसारण आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों।

0: मीडियम वेवतन 47.6 मीटर यानी 870 किलोहर्ट्स, टीआरएम 854 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे आं आकाशवाणी बठिंडा तो तैयार कीता प्रोग्राम जिस तहत देश दी सुरक्षा विच आत्म निर्भरता इस विषय ते कर्नल जगजीत सिंह मान होना नाल कीती मुलाकात सुनदे आं। इस मुलाकात दे संचालक ते निर्माता निर्देशक हन मनदीप राजौरी। आकाशवाणी दे बठिंडा पटियाला अते लुधियाना केंद्र भी इस दा प्रसारण नालो नाल करनगे।
1: नमस्कार श्रोतियो, मैं हाँ मनदीप राजौरा। अज इस प्रोग्राम च खास तौर ते गल करांगे रक्षा खेत्र च भारत दी आत्म निर्भरता बारे। किसी भी देश दी सुरक्षा उस दी आर्थिक ताकत, विज्ञानक समर्था अते रक्षा तैयारी ते निर्भर करती है। भारत ने पिछले कुछ सालां च रक्षा उत्पादन दे खेत्र विच महत्वपूर्ण तरक्की कीती है। देश दा उद्देश सिर्फ अपनियां लोड़ां पूरियां करना ही नहीं, सगो विश्व पद्धर ते एक मजबूत रक्षा निर्माता अते निर्यातक देश वजों उभरना भी है। आत्म निर्भरता दा मतलब है अपनियां लोड़ां दी पूर्ति लई दूजे देशां ते घट्टो घट निर्भर रहना। रक्षा खेत्र च इस दा अर्थ है कि हथियार, गोला बारूद, मिजाइलां, रडार, जंगी जहाज, टैंक ते होर रक्षा उपकरणां दा निर्माण भारत विच ही होवे। इस नाल ना सिर्फ देश दी सुरक्षा मजबूत हुंदी है, सगो विदेशी मुद्रा दी भी बचत हुंदी है अते रोजगार दे नवे मौके भी पैदा हुंदे ने। भारत सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभियान तहत रक्षा खेत्र नूं विशेष तरजीह दित्ती है। रक्षा उत्पादन विच देसी कंपनियां नूं उत्साहित कीता जा रहा है। निजी उद्योगां, स्टार्टअप्स अते एमएसएमई इकाइयां नूं भी रक्षा निर्माण नाल जोड़िया गया। मेक इन इंडिया अते मेक फॉर वर्ल्ड दी सोच नाल भारत हुण रक्षा निर्यात भी वधा रहा है। भारत ने कई महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियां अपने बलबूते ते विकसित कीतियां ने, जिन्हां च अग्नि अते पृथ्वी मिजाइलां, आकाश हवाई रक्षा प्रणाली, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिजाइल, तेजस लाइट कंबैट एयरक्राफ्ट, अर्जुन मुख जंगी टैंक, धनुष अते एटगैस तोप प्रणाली, नाल ही पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लांचर वर्गे भी उपकरण आप ही तैयार कीते ने। रक्षा खोज अते विकास संस्था DRDO भारत की रक्षा तकनोलॉजी का केंद्र है। DRDO ने मिजाइलां, रडार, इलैक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां, ड्रोन संचार उपकरण अते होर अनेकां तकनीकां विकसित कीतियां ने। अज भारतीय सेना दियां कई लोड़ां देसी तकनोलॉजी राही पूरियां कीतियां जा रहियां ने। कुछ साल पहलां तक भारत रक्षा समगरी बाहरले मुल्कां तों मंगवाउंदा सी, पर भारत हुण कई देशां नूं रक्षा उपकरण आप खुद निर्यात कर रहा है। भारतीय मिजाइलां, रडार, सुरक्षा उपकरण, गश्ती जहाज अते होर रक्षा समान दी विदेशां च भारी मंग है। रक्षा निर्माण दे खेत्र च इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनोलॉजी अते साइबर सुरक्षा विच भारत नवे मौके सिरज रहा है। स्टार्टअप्स अते नवी सोच वाले नौजवानों नूं सरकार वल्लों कई योजनावां राहीं उत्साहित भी कीता जा रहा है। हालांकि भारत ने काफ़ी तरक्की की है, पर कुछ चुनौतियां अजे भी मौजूद ने। उच्च पदरी इंजन तकनोलॉजी, कुछ खास इलैक्ट्रॉनिक प्रणालियां अते आधुनिक सैमीकंडक्टर तकनोलॉजी विच होर खोज अते निवेश की लोड़ महसूस हो रही है। रक्षा खेत्र च आत्म निर्भरता सिर्फ हथियार बनाउण दा मामला नहीं, सगों ए राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, विज्ञानक उन्नति अते देश दे स्वै माण नाल जुड़िया होया मामला भी है। अज भारत तेजी नाल एक अजिहे देश वजों अगे वध रहा है जो अपनी रक्षा लई लोड़ींदी तकनोलॉजी खुद विकसित कर सकदा है ते दुनिया नूं भी रक्षा उपकरण मुहैया करवा सकदा है। मौजूदा समय भारत की रक्षा प्रणाली च आत्म निर्भरता लई होर ज्यादा जानकारी हासिल करने दे लई असी मुलाकात रिकॉर्ड की रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत सिंह मान होर नाल। आओ सुनदे हां यह मुलाकात। कर्नल जगजीत सिंह मान जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी दे प्रसारण च।
2: बहुत मेहरबानी इत्थे बुलाउण वास्ते, और मेरे तो जो भी अच्छी और चंगी गल दसी जा सकू मैं जरूर करूंगा।
1: कर्नल साहब, असी गल करना

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233। फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
3: ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਦੀਪਾ ਛਾਬੜਾ ਨਾਲ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ 10:41 ਤੇ 54 ਸੈਕਿੰਡ।
2: ਜੀ ਅਮਨ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ?
3: ਜੀ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਫਿਲਮ ਸੰਤੋ ਬੰਤੋ, ਗੀਤਕਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਲਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਬਾਤ ਐਸ ਮਹਿੰਦਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਫੀ ਦੀਆਂ।
2: ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਸ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਗੀਤ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ, ਆਨੰਦ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ।

0: यार बुलावे मुख दिखला जाए ओ चोरी चोरी आ जाए ओ चोरी चोरी आ जाए ओ चोरी।
1: अमन बहुत ही खूबसूरत गीत तुसी कढ़े हुए है श्रोतियां दे लई ते अगला गीत भी मैनू लगदा बहुत ही प्यारा है ते गीत कौन गा रहे ने ते किन्हां दी ये रचना है ये भी श्रोतियां नाल सांझा कर दिओ।
2: जी सुनदे हां अगला गीत फिल्म सस्सी पुन्नू दा, आवाजा ने आशा भोंसले ते मोहम्मद रफी ते गीतकार ने मुनसिफ।
1: जी बहुत ही प्यारा गीत दस मेरिया दिलबरा।

0: नमस्कार। सुबह के 11 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने पेपर लीक रोकने और
1: कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की

0: बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटे में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगें रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
2: सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर आप तरीके से चर्चा, उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुझाव।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक आधुनिक, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल कानूनी माहौल बनाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आयोग ने समावेशिता, आम सहमति और विविध कानूनी परंपराओं के सम्मान के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए नई वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता लगातार दिखाई है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र पर हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। एक आधिकारिक बयान में दूतावास ने एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे स्थानीय अधिकारियों के साथ सक्रिय संपर्क में हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संभाली तो हमें कौन संभाले। वेल दोस्तों, इस भजन की जो पंक्ति है जगन्नाथ रथ यात्रा की रूह को बखूबी बयां करती है। जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच आते हैं, तब हर दिल से बस यही प्रार्थना निकलती है, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जगन्नाथ। शुरू के साउंडस्केप में हर एहसास को मोटिव इनोवेशन से नहीं पहचान देते हैं आप। शुरू के साउंडस्केप में हर एहसास को इनोवेशन से नहीं पहचान देते हैं आप। क्लासिकल म्यूजिक की रूह को कंटेम्प्रेरी बीट्स के संग खूबसूरती से ब्लेंड करते हैं आप। हर कॉम्पोजिशन आपकी वर्सटैलिटी और एक्सपेरिमेंटल स्पिरिट की कहानी बयां करती है। राम संपत, आपकी धुने हर बार म्यूजिकल कैनवस पर लहरा कर झूम कर संगीत का जश्न मनाती है। राम संपत इज अ सेलिब्रेटेड इंडियन कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, वोकलिस्ट नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक, इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे गाइस। 25 जुलाई 1977 को मुंबई में जन्मे राम संपत की जिंदगी की पहली दस्तक ही ऐसे म्यूजिकल घराने में हुई जहां सुर, ताल और मेलेडीज रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। उनके दोनों पेरेंट्स म्यूजिकली इंक्लाइंड थे और उनका एंसेस्ट्रल हाउस कर्नाटक म्यूजिक के कई लेजेंडरी सिंगर्स और म्यूजिशियंस का उसमें आना जाना लगा रहता था। बचपन से ही सुरों, रियाज और रागों के इस दिलकश माहौल और नेचुरल अंडरस्टैंडिंग के बीच वो रहे, जी हाँ, जो आगे चलकर उनकी म्यूजिकल जर्नी की स्ट्रांग फाउंडेशन बनी। इसी एनरिचिंग म्यूजिकल एनवायरनमेंट ने उन्हें कर्नाटिक म्यूजिक सीखने के लिए इंस्पायर किया और लगभग 8 साल तक शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद राम ने मुंबई के कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की दोस्तों, जहां एक रॉक बैंड में वो कीबोर्ड प्ले किया करते थे। यहां रॉक, वेस्टर्न रॉक की रॉ एनर्जी और इंडियन क्लासिकल के सोलफुल डेप्थ ने मिलकर उनकी म्यूजिकल आइडेंटिटी को शेप किया और यहीं से दोस्तों उनके सोनिक विजन को नई डायरेक्शन मिली। राम संपत ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई के एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से की, जहां उन्हें 7,000 से ज्यादा एडवर्टाइजिंग जिंगल्स कंपोज किए। छोटे ड्यूरेशन के जिंगल में भी मेमोरेबल मेलेडीज क्रिएट करना उनकी खासियत बन गई। एडवर्टाइजिंग के बाद राम संपत ने इंडी पॉप की दुनिया में कदम रखा और 90s और अर्ली 20s के इंडी पॉप एरा को अपने फ्रेश मेलेडीज और कंटेम्प्रेरी साउंड के साथ रीडिफाइन किया। बॉलीवुड में राम संपत ने 2002 की लेट्स टॉक से

डेब्यू किया, लेकिन 2004 की खाकी ने उन्हें एक प्रॉमिसिंग फिल्म कंपोजर के रूप में एस्टैब्लिश किया। इसके बाद पीपली लाइव, डेली बेली, तलाश द आंसर, लाइज विद इन, फुकरे, भूतनाथ रिटर्न्स, रमन राघव 2.0, रईस, कटहल, लापता लेडीज जैसे प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने अपने म्यूजिकल आइडेंटिटी और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से हर कहानी को एक अलग सोनिक टेक्सचर दिया, जिससे उनका जो म्यूजिक है वो सिर्फ बैकग्राउंड्स को नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। टेलीविजन की दुनिया में भी राम सरबत ने अपने म्यूजिक ब्रिलियंस की गहरी छाप छोड़ी। दोस्तों मैं तो हम उन्हें विश करना चाहेंगे, वी विश राम सरबत अ वेरी हैप्पी बर्थडे, कीप एंटरटेनिंग अस विद योर इनोवेटिव साउंडस्केप एंड सोलफुल मेलोडीज। फिलहाल अब जो हम ट्रैक सुनेंगे दोस्तों, उस ट्रैक के बारे में बस यही कहना चाहूंगी, जब आप सुनेंगे तब आपको महसूस होगा, लेकिन बस यही कहना चाहूंगी कि इस कॉम्पोजिशन में राम सरबत ने फोक इंस्पायर्ड सोल को कंटेम्प्रेरी साउंड के साथ बहुत ही नजाकत के साथ ब्लेंड किया है। जी हाँ, इस ट्रैक का म्यूजिक कभी वोकल्स पे हावी नहीं होता बल्कि हर लफ्ज को सांस लेने की जगह देता है। तो चलिए सुनते हैं इस ट्रैक को, ओ सजनी रे, ऑन द वोकल्स अरिजीत सिंह।

सच नहीं रे जी। हाँ अरिजीत सिंह के जो सोलफुल वोकल्स है ना, उसका क्या कहें, उनकी आवाज का ठहराव और इमोशनल डेप्थ राम संपत के म्यूजिक के साथ मिलकर हर लफ्ज को महसूस करवा देती है ना। इस ट्रैक में आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रही है प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म। जी हाँ, रिनाउंड फिल्म मेकर स्क्रीन राइटर प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन, जी हाँ, उन्होंने मलयालम सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म लोखा चैप्टर वन चंद्र में अपनी फियरस एक्शन अवतार और पावरफुल परफॉर्मेंस से न सिर्फ मेकर्स को बल्कि ऑडियंस को भी काफी इंप्रेस किया है। और अब कल्याणी बॉलीवुड में अपने डेब्यू करने जा रही हैं रणवीर सिंह स्टारर प्रलय, विच इज अ हाई बजट जॉम्बी एक्शन थ्रिलर। प्रलय में कल्याणी का रोल कन्वेंशनल लीडिंग लेडी, जैसे होते ना कि डैमसल इन डिस्ट्रेस, ट्रेडिशनल टाइप जैसा नहीं होगा, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस एक्शन हीरोइन के रूप में वो नजर आएंगी। और अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, फिल्म में कल्याणी और रणवीर दोनों हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस परफॉर्म करेंगे। उन्हें इंटरनेशनल स्टंट कोऑर्डिनेटर्स और वर्ल्ड क्लास

एक्शन एक्सपर्ट्स की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। कहा जा रहा है कि कल्याणी के एक्शन सीक्वेंसेस का स्केल और एग्जीक्यूशन हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स की लीडिंग फीमेल एक्शन स्टार्स का लेवल पे होगा। उनके डेयर डेविल स्टंट्स और हाई ऑक्टेन एक्शन पीसेस को इसी सिनेमैटिक स्टैंडर्ड पर डिजाइन किया जा रहा है दोस्तों। फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त से शुरू होगी। पहला स्केड्यूल दिवाली तक कंप्लीट किया जाएगा। फिल्म का दूसरा स्केड्यूल 2027 यानी नेक्स्ट ईयर रिज्यूम होने की उम्मीद है। लगभग 300 करोड़ के बजट में बन रही प्रलय एक विजुअली स्पेक्टेकुलर VFX ड्रिवन जोम्बी एक्शन थ्रिलर होगी, जहां सर्वाइवल सस्पेंस और लार्ज स्केल सिनेमैटिक एक्शन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फिल्म का डायरेक्शन जय मेहता कर रहे हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम। और अब देशभक्ति के एसेंस से भरे इस ट्रैक को सुनिए और इसके एक एक लव्स को दिल से महसूस कीजिए। जय हिंद।

মাসে হে মাটি, মাসে হে মাথা, মাথে পে মাটি সাজা কে চলো। ये दोस्तों सिर्फ एक पेट्रियोटिक लाइन नहीं है, बल्कि एक सोल्जर के जज्बात का गहरा एहसास है। उन्होंने अपने माथे पर सिर्फ माटी नहीं, अपने देश की इज्जत, अपनी भारत माता का गुरूर भी सजाया है, और उसकी इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रिल्स, जहां मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए देते हैं नेक्स्ट बॉलीवुड अपडेट। सैयारा के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद आहान पांडे नजर आएंगे अब्बास जफर अली की फिल्म में। फिल्म के कुछ ग्लिम्स जो ऑनलाइन सर्फेस पे काफी यू नो

नजर आएंगे अब्बास जफर अली की फिल्म में। फिल्म के कुछ क्लिम्स जो ऑनलाइन सर्फेस पे काफी वायरल हो रहे हैं, वो यूके में शूट हुए हैं ग्रैंड स्केल पे। आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन और अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म दोनों की प्रोड्यूसर डायरेक्टर जोड़ी के तौर पर फिफ्थ कोलेबोरेशन होगी। आहान पांडे, शर्वरी, ऐश्वर्या ठाकरे और बॉबी देओल स्टारर इस अनटाइटल्ड रोमांटिक एक्शन ड्रामा की थिएटरिकल रिलीज के लिए 26 मार्च 2027 की डेट लॉक कर दी गई है, यानी नेक्स्ट ईयर। दोस्तों, शिरवानी मेड हर डेब्यू विद यशराज फिल्म्स बंटी और बबली इन 2021। बेशक वो फिल्म नहीं चली थी, खैर आहान की ये सेकंड प्रोजेक्ट है यशराज फिल्म्स के साथ आफ्टर सैयारा। अब बॉलीवुड सरताज के लिए सवाल रेडी है, आज किस बॉलीवुड कंपोजर का हैप्पी हैप्पी बर्थडे है? हमने उनके बारे में बातें की हैं इस प्रोग्राम में, उनका कंपोज किया हुआ गाना लगाया है 9868107070, 9868107070 ये नंबर है जिस पे आप भेज सकते हैं इसका आंसर, बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। जब मैं कॉल करूं तो प्लीज कॉल कनेक्ट हो जाए, एक तो मैं ये प्रेयर करती हूँ, साथ में वहां शोर ना हो और साथ में आप बहुत ही शांत जगह पे हो जहां पर आपको हमारी आवाज आए, है ना? तो चलिए अभी फिलहाल सुनते हैं। अच्छा, आपके चेहरे पे जो स्माइल आ रही है ना, इसको आने दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ट्रैक जो है थोड़ा हंस के तो दिखाइए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर घर

0: he would have done all right. What's the outpouring been like in India, you know, amongst a nation who love their cricket and their cricket history and who's, you know, revered worldwide?
1: That he certainly is, and there have been a lot of accolades here in India as well, tributes pouring in. In India, he played very few matches, but the legend certainly was very strong. And even as I was growing up in my early impressionable years, the biggest bragging rights in the game seemed to be who has the highest aggregate score, which he did, the world record score, and of course the 365 not out, which was a bit like Everest at that point of time. You know, it's the highest of the highs. He was certainly a larger than life figure, and I would dare to suggest that there is no Indian who doesn't hold him in that regard of, as Jim says, the best cricketer in the world. We all grew up knowing that Sir Garfield Sobers wasn't a class of one.
0: Well, that's all we've got time for on Stump this week for Akash Vani. Don't forget to follow us on X. We're at BBCWS Sport and use the hashtag BBCStump. And check us out on YouTube as well. Go to the BBC World Service on YouTube. Thanks to Chari Sharma and Jim Maxwell and to all of you for listening. Speak to you soon. Bye-bye.
2: Stumped is a BBC Sport production for the BBC World Service in association with ABC and Akash Vani.
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
4: आ गई हूँ मैं प्रियंका आपसे बातें करने के लिए प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रिल्स में. अब बॉलीवुड अपडेट्स के साथ कौन है हमारे साथ फोन लाइन पर, जो है हमारे बॉलीवुड सरताज. हेलो.
5: हेलो मैम, नमस्ते. राजकुमार संतानी, अकोला महाराष्ट्र से.
4: नमस्कार राजकुमार के संतानी, आप अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं. आपके यहाँ थोड़ा सा शोर आ रहा है.
5: हाँ जी,
4: एक्चुअली थोड़ा सा शोर आ रहा है. जहाँ पर आप हैं वहाँ लगता है काफी गाड़ियाँ आगे जा रही हैं.
5: एक्चुअली हवा चल रही है, पानी का मौसम है.
4: अच्छा, पानी का मौसम है, बारिश आ रही है.
5: बारिश आने वाली है, पर आए तो बहुत अच्छी बात है.
4: हमारे तो सुबह सुबह हम निकले, पर हमारे साथ तो बारिश आंख में चोली खेल रही है. इस समय धूप हो गई है, देखिए दिल्ली में तो.
5: हाँ हाँ,
4: अच्छा तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि राम संपत हैं, वो म्यूजिक बॉलीवुड कंपोजर जिनका आज बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या आपको खास है?
5: जी, पहले तो राम संपत जी का बर्थडे है, उनके लिए शुभकामना देता हूँ. और उनका जो है अंबर सरिया, जो की फुलकरे मूवी का गीत है, अच्छे गीत है उनके. और बाकी कंपनी 2002 में उन्होंने म्यूजिक दिया था, और 2004 में खाकी, और अभी आपने लापता लेडीज का गीत बहुत अरिजीत सिंह का मजे से सुनाया, काफी अच्छा लगा.
4: ओके, तो आपको उनके म्यूजिक में क्या अच्छा लगता है?
5: जी, उनकी म्यूजिक काफी अच्छी है, काफी बढ़िया है. आप चाहे खाकी में सुन लीजिए, दिल डूबा, या अंबर सरिया जो अभी आप फुरकरे गीत उनका सुन लीजिए, या फिर जो खलास कंपनी फिल्म का है जो कि डीजे में आज भी सरचर कर बोलता है, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग म्यूजिक है उनकी.
4: वो एक्चुअली इंडियन म्यूजिकल रूट्स को कंटेम्प्रेरी साउंड के साथ बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करते हैं ना, जैसे उनका गाना मॉडर्न भी लगता है, टाइमलेस भी, और अच्छा भी लगता है सुनने में.
5: बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया लगता है, बेस्ट लगता है, बेस्ट म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर है राम संपत जी.
4: जी, तो चलिए कोई गाना सुना दीजिए.
5: जी, फुलकरे मूवी का ही लगा दीजिए, अंबर सरिया, काफी बढ़िया गीत है वो.
4: हम
5: अच्छा
4: तो
5: गीत
4: प्ले करेंगे, लेकिन गाना आए ना आए, गाना चाहिए, आओ गाना सुनाएंगे हमें.
5: तो गीत कौन सा गाएं आप बताइए, इन्हीं का गीत गा देते हैं जो कि इनका बर्थडे है. तो दिल डूबा तेरी आंखों में, दिल डूबा जो कि नीली आंखों वाला दिल डूबा, ऐसा कुछ गीत था खाकी फिल्म का.
4: आपको जो जिसके लिरिक्स आते हो ना, जो आपको दिल कहे कि हाँ मुझे ये सुनना है, ये सुनाना है इस समय, तो सुनाइए.
5: अच्छा, तो हमारा गीत, वैसे तो SRK का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जो कि उनके गीत काफी अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं. तो उन्हीं का निगम साहब का गीत है ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना.
4: मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, क्योंकि सीने में धड़कता है ये दिल, है ना?
5: जी जी जी, बिल्कुल काफी.
4: उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद से को करता
5: जी,
4: है
5: जी जी जी. सोनू निगम जी एकदम बेहतरीन सिंगर है, किसी को भी अपनी सिंगिंग देते हैं तो उस गीत में जान आ जाती है.
4: वैसे ऐसा लगा हमने गाना नहीं कविता पढ़ी है.
5: जी जी जी, हम सिंग.
4: हाँ जी
5: जी, हम सिंगर नहीं है, एकदम परफेक्ट सिंगर है. जो आपकी आवाजें काफी अच्छी है, जो आप बता रहे थे, हमें आता नहीं, हमारा ट्यून वैसा नहीं बैठता है.
4: आपको पता है गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, क्योंकि गाने सुन के ना क्या होता है, जो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, वो कम हो जाता है, पता है, और चेहरे पे स्माइल आ जाती है. और इससे बड़ी क्या

0: चाहिए, चेहरे पे स्माइल आ गई, आपका खून जो है, जो ब्लड है वो अच्छा सर्कुलेट हो गया, और क्या चाहिए, है ना?
1: जी बिल्कुल, ऐसे में रिम्बो से कॉल आ गया तो अच्छी खुशी आ गई। और अगर पानी आता है कल संडे तो हम एंजॉय भी करेंगे बच्चों के साथ में, और सोनू के सुहागा भी जाएगा और FM रेनबो भी सुनेंगे अच्छे से।
0: क्या बात है, चलिए इसी बात से अंबर सरिया लगाते हैं, ये ट्रैक लगाते हैं, ये ट्रैक है फुकरे मूवी का, और इस गाने में आपको क्या खासियत लगती है?
1: जी राम संपत जी का म्यूजिक है इसी, और इन्हीं की वाइफ ने गाया है, काफी अच्छा गीत है ये, काफी बेहतरीन गीत है।
0: जी बिल्कुल, सोना के जो अर्दी वोकल्स हैं इस ट्रैक में वो हार्ट बीट हैं इस ट्रैक के, क्यों लगता है ना उनकी आवाज का जो रॉ वार्म्थ है, जो एफर्टलेस एक्सप्रेशन है, वो हर लव्स को एक अलग ही चार्म देता है, मानते हैं बात?
1: बिल्कुल बिल्कुल सही मानते हैं तुम,
0: चलिए
1: काफी
0: बिल्कुल, हाँ जी
1: काफी मेहनत करते हैं, काफी अच्छे से बनाते हैं ताकि बाद में हम इसे प्रचार कर सकें, आप हम सभी काफी काफी मेहनत करते हैं।
0: चलिए अच्छा लगा कि आप उनकी मेहनत को इतना अप्रिशिएट करते हैं, आपसे बात करके राम अच्छा लगा बहुत ही। चलिए इसके साथ आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।
1: बिल्कुल बाय, थैंक यू थैंक यू।

दोस्तों, सोना की आवाज में यही जो ट्रैक है ना, इसमें पंजाबी फोक की रूह और कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड साउंड का एक खूबसूरत संगम है। और राम संपत ने इस कॉम्पोजिशन में फोक म्यूजिक की मिठास को मॉडर्न अरेंजमेंट के साथ नेचुरली ब्लेंड किया कि हर

0: वाह, लगता ही गाना कि हम पहली बार सुन रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। आप हमारी जो नेक्स्ट प्रेजेंटर है ज्योति, वो भी इस ट्रैक को एंजॉय कर रही थी। और इसी के
1: बिल्कुल
0: साथ
1: आपने बिल्कुल मेरा मूड जो अगले प्रोग्राम के लिए ना फिट कर दिया है, इतना
0: चलिए।
1: अच्छा गाना बजा के।
0: ओ वाह, ज्योति का मूड हो गया सेट। आई होप आपका मूड भी हो गया बिल्कुल सेट एंड फिट। और इसी के साथ मैं आपके मैसेजेस हम ले लेते हैं जल्दी से। राम राम जी। लगी ये दिल की क्यों यूं ही लगाई नहीं जाती, दिल की बात सारी यूं किसी से बताई नहीं जाती, कोई तो होगा रिश्ता जरूर आपसे, यूं तो अखियां आपके लिए बसाई नहीं जाती। वाह, चाहे जग जो समझे परवाह है नहीं, किसी को अपना है जब बनाया, दिल से है अपनाया, फिर और तो कोई इस दिल में नहीं है समाया, खुद आप ही समझे ना या ना समझे, हम तो धूल बराबर हैं चरणों के आपके, ये ऐलान है हमारा, सरेआम है हमारा, क्योंकि दिल से दिल तक ये प्यार है हमारा, ये प्यार है हमारा, बहन का भाई से, श्रोता का रेनबो से, हमारा आपसे, आपके विचारों से, आपके मधुर संगीत से, आपकी सोच से, आपकी पूरी टीम से। प्रियंका जी, आपके तहे दिल से नमन, आपके माँ बाप जी, माँ बाप को भी प्रणाम है हमारा। रोहित खेड़ा दिल्ली 9 से। हर बार रोहित जी इतना अच्छा मैसेज लिखते हैं कि हमारे पास शब्द हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। दिल से लिखते हैं, दिल तक समझ में आती है आपकी बात। अंशी शर्मा हसनापुर मेरठ से हमारा वेलकम भी करती हैं और बिल्कुल सही जवाब भी देती हैं। इसके साथ पंकज जी अमरावती महाराष्ट्र से हमें लिखते हैं, और इन्होंने भी कहा है कि बॉलीवुड ट्रेल्स में ओके, इन्होंने पिछले शनिवार को भी सुना था और मैसेज भी किया था, शामिल निवान का मैसेज। ऐसा नहीं होगा, किया होगा मैंने शामिल, शायद स्किप कर गए हो गए आप। राम संपत परवीन चौहान हमें लिखते हैं मध्य प्रदेश से, सही जवाब। मिसेस धर्म भाटिया का भी मैसेज है, और इसी के साथ सलीम मलिक का भी मैसेज है मेरठ से, और इसी के साथ हमें मैसेज है, गलत जवाब दिया है विनोद सोनी जी ने। और इसी के साथ प्रियंका, आप बहुत अच्छा गाया आपने दीवाना ये दिल। अरे थैंक यू डॉली। पता है मैंने एक्चुअली कुछ लिरिक्स आपके जहन में रह जाते हैं और बस एक तार छिड़ती और वो आप बस गुनगुनाने लगते हैं, यही हुआ, बाकी पसंद आया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमें रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं, इन्हें भी जो फर्स्ट ट्रैक था वो काफी सुकून दे गया, चलिए बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ, टेक केयर गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफ्रीम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi posted a fresh video message on his Instagram handle last night, thanking everyone for the responses and positive suggestions received to his previous video, where he had announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the fresh video message, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
1: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा.
2: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now. The earlier record was 300 million views. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency, NTA, has terminated

0: न टूटना न रूठना न करना कोई बहाना तुम, न टूटना न रूठना न करना कोई बहाना तुम, मैं हूँ तो सब कुछ है बस खुद को ये याद दिलाना तुम।
1: ते सिर्फ असियो ही नहीं साडे नाल ने साडे स्रोते प्रोग्राम पैगाम दे विच अपने बेहतरीन खूबसूरत पैगामा दे नाल।
0: बिल्कुल 77173 73 146 ते स्रोतियां ने भेजे सानू पैगाम,
1: ते ए सारे ही भेजे हुए पैगाम प्रोग्राम दे विच शामिल करांगा मैं मनदीप रजौरा ते मेरे नाल
0: दीपा छाबड़ा।
1: सुनना ना भुलना स्रोतियो प्रोग्राम पैगाम मिति 26 जुलाई सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत।
0: जी बिल्कुल स्रोतियो अपनी अलार्म घड़ी ते अलार्म ला हेलो 26 जुलाई सवेरे 7 बजे प्रोग्राम पैगाम।

0: जी 0164-2240-331 नंबर डायल हो, जी 0164-2240-331 नंबर डायल हो चुका है। सुन दे आ, साड़े नाल कौन स्रोता जुड़े ने? हैलो,
1: हाँ जी सत श्री अकाल मैम।
0: हाँ जी सत श्री अकाल जी,
1: हो ठीक ठाक हो जी?
0: हाँ जी हाँ जी, प्रोग्राम विच कॉल करने लई धन्नवाद जी।

0: 10 लाख दी लॉटरी मेरी।
1: फसी फर्जी ऑफर्स तो सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनो सुचेत रहो।
4: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान EMI राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
4: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
6: जी 0164-2240-341 नंबर डायल हो चुका है। देखते हैं साढ़े नाल अगले भैन कौन जुड़े।

0: हेलो हेलो हेलो
1: मैम
0: हेलो। हाँ
1: मैनू
0: जी, कौन बोल रहे हो?
1: आवाज आ रही है
0: हेलो
1: तुहाडी। हेलो मैम, सत श्री अकाल, राणी बोल
0: हेलो
1: रही हूँ जी, मैं नरवाना रोड
0: हेलो
1: दशमेश नगर तो। हेलो हेलो मैम, हेलो

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: जदों गल करदे हां बठिंडा विच पेट दे इलाज दी, हमेशा याद रखो रॉयल K9 पेट क्लिनिक, जिथे पेट्स दा हरेक किस्म दा इलाज अते वैक्सीनेशन दा काम पशु पालन विभाग तो रिटायर्ड तजर्बेकार डॉक्टर हरजिंदर सिंह अते डॉक्टर जगसीर सिंह वालों कीता जांदा है। पता नोट कर लो, रॉयल K9 पेट क्लिनिक, नियर होटल गोल्ड स्टार, बीबी वाला रोड, बठिंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9417357156 अते 9814034858।
3: जी 0164-2240-331 नंबर डायल हो चुका है, देखते हैं साडे नाल अगले स्रोता कौन जुड़े ने।
4: हेलो,
5: हाँ जी,
4: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
5: सत श्री अकाल, पहला पुत्र सुनो सारे स्टाफ नो दुनिया से जुड़ के जी नाल सुनना है स्रोता नो नाल सुनो
4: जी
5: जी। सत श्री अकाल
4: जी, साडे वल्लों भी तुहानू सारयां नू सत श्री अकाल जी। नाम दस दो अपना।
5: मेरा नाम जी गुरदेव कौर सवाई मैं जिला बठिंडा
4: जी जी। ते केड़ी गल साडे नाल सांझी करना चाहोगे अज तुसी?
5: पहला तां मैं तुहानू उन्हीं लाभां देनी है माड़ा जिहा।
4: हां जी मैम।
5: पहला रानी दी कॉल लगी सी नरवाने तों, तुसी ओहदी कॉल नहीं चक्की।
4: अच्छा मैम, लाइन बिजी चल रही होगी ना।
5: हां ते इक हुण पिछे गुद्दी ने लाई सी कॉल, एहदी नहीं चक्की।
4: जी ठीक है जी, प्रोग्राम विच कॉल करने लिए तुहाडा धन्यवाद, तुहाडी फरमाइश ते राजवीर जोंदा दा गीत चला रहे हैं जी।
5: शुक्रिया बेटी, शुक्रिया।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 1-4-5-5-5 ते कॉल करो।
1: ना टूटना ना रूठना ना करना कोई बहाना तुम, ना टूटना ना रूठना ना करना कोई बहाना तुम, मैं हूँ तो सब कुछ है, बस खुद को ये याद दिलाना तुम।
2: ते सिर्फ असी ही नहीं, साडे नाल ने साडे स्रोते प्रोग्राम पैगाम दे विच अपने बेहतरीन खूबसूरत पैगामा दे नाल।
1: बिल्कुल 77-173-73-146 ते स्रोतिया ने भेजे सानू पैगाम,
2: ते ए सारे ही भेजे हुए पैगाम प्रोग्राम दे विच शामिल करांगा मैं मनदीप रजौरा ते मेरे नाल
1: दीपा छाबड़ा।
2: सुनना ना भुलना स्रोतियो प्रोग्राम पैगाम, मिति 26 जुलाई, सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत।
1: जी बिल्कुल स्रोतियो, अपनी अलार्म घड़ी ते अलार्म ला हेलो 26 जुलाई सवेरे 7 बजे प्रोग्राम पैगाम।
3: जी स्रोतियो, स्टूडियो की घड़ी ते समा होया है जी 12:59 ते 26 सैकेंड, ते देखदे हां कि 0164-2240-331 नंबर डायल करके साडे नाल केड़ी भैन जुड़ी है।
4: हेलो।
5: हेलो, हां जी मैम।
4: हां जी नमस्कार जी।
5: हां जी नमस्कार मैम।
4: हां जी नाम दस दो जी अपना।
5: मेरा नाम सरबजीत कौर, जिला फरीदकोट, पिंड हरिनौ जी।
4: जी ते केड़ी गल अज साडे नाल सांझी करना चाहोगे तुसी?
5: कोई मर्जी पुछो मैम।
4: हां जी हेलो।
5: हां जी हां जी हेलो।
4: हां जी केड़ी गल साडे नाल सांझी करनी चाहोगे अज तुसी?
5: बस ठीक ठाक आ मैम, काम धंधा नबेड़ के तुहाडा फोन।
4: जी ते की केड़ा सुनोगे मैम?
5: हां जी ਤੁਸੀਂ ਆਖਾ ਸਤਿੰਦਰ ਬੱਟੀ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ।
4: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
5: ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ?
4: ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ।
5: ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ।
4: ਹਾਂਜੀ
5: ਰਾਣੀ ਜੀ ਨਰਵਾਨੀਆ ਜੀ ਵੀ ਕਾਲ ਨੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਅਟੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਮ, ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਫੋਨਾਂ ਚ।
4: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
5: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
4: ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ।
5: ਹਾਂਜੀ
4: ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
5: ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ।
6: ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵੀਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਵੰਗ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਣ ਕਨਾ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक अते परीक्षा बेनेमिया दे मामले विच फास्ट ट्रैक अदालत कायम करन अते सख्त सजा दा प्रबंध करन लई एक खरड़ा बिल नूं मंजूरी दे दित्ती है। संसद भवन कॉम्प्लैक्स विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई कैबिनेट मीटिंग विच इस बिल नूं मंजूरी दित्ती गई। इस बिल नूं अगले हफ्ते संसद विच पेश कीते जाण दी उम्मीद है। श्री मोदी ने वीरवार नूं एक वीडियो संदेश विच पेपर लीक विरुद्ध सख्त कार्रवाई के प्रबंधा वाला एक बिल संसद विच पेश करन दा ऐलान कीता सी। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियां की मदद नाल इंडोनेशिया के जकार्ता तो पंजाब के एक भगौड़े गैंगस्टर नूं भारत वापस डिपोर्ट करन विच सफलता हासिल कीती है। ओ अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध विच शामिल सी अते कतल ते हथियारां बारे कानून समेत कई घिनौने अपराधिक मामलों विच लोड़ींदा सी। नोमैड हंट नां दी इस कार्रवाई के वेरवे सांझे करदिआं पुलिस डायरैक्टर जनरल गौरव यादव ने कहा कि राज पुलिस दी गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स AGTF अते ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्रेडिशन सेल OFTEC पिछले 6 महीनों तो राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां नाल नेड़ियों तालमेल करके गैंगस्टर जोबनजीत सिंह दा पता ला रहे सन। उन्हां कहा कि मुलजम कई देशां विच काम करके गिरफ्तारी तो बच रहा सी। ओ पंजाब विच दर्ज कतल दे 4 मामलों विच लोड़ींदा सी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री वरिंद्र कुमार गोयल ने पंजाब नूं हरिया भरिया बनाउण अते चुगिरदे दी संभाल दे उद्देश नाल अपना पंजाब फाउंडेशन वल्लों शुरू कीती गई महत्वपूर्ण मुहिम मिशन हरियाली 2026 दी शुरुआत कीती। इस मुहिम तहत सूबे भर विच 9 लाख बूटे लाए जाणगे। इह मुहिम कल सीबा स्कूल लहरा गाका दी कैंपस विखे कराए गए विशेष समागम दौरान शुरू कीती गई। इस मौके कैबिनेट मंत्री ने विद्यार्थियों नूं बूटे वंडे अते उन्हां नूं वध तों वध बूटे ला के उन्हां दी संभाल करन दा संदेश दिता। अपने संबोधन विच उन्हां ने भी कहा कि चुगिरदे दी सुरक्षा मौजूदा समय दी सब तों वड्डी लोड़ है अते हर नागरिक नूं इस विच अपना योगदान पाउणा चाहीदा है। उन्हां कहा कि सिर्फ बूटे लाउणा ही नहीं सगों उन्हां दी संभाल करके उन्हां नूं दरख्त बनाउणा भी साडी सांझी जिम्मेवारी है। कैबिनेट मंत्री ने अपना पंजाब फाउंडेशन की शलाघा करदे कहा कि सूबे भर विच 9 लाख बूटे योजनाबद्ध ढंग नाल लाउण अते उन्हां दी संभाल दा रिकॉर्ड रखण दा उपराला बेहद शलाघायोग है। उन्होंने सीबा स्कूल की भी शलाघा की थी ते विद्यार्थियों नूं अपील की थी कि हर विद्यार्थी घट्टो घट एक बूटा जरूर लाए अते उसकी पूरी देखभाल करके उसनूं दरख्त बनाए। इस दौरान उन्होंने बूटियां की सही देखभाल अते संभाल संबंधी कई लाभदायक नुकते भी सांझे किए। पंजाब के खेतीबाड़ी ते किसान भलाई पशु पालन ते डेयरी विकास मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कल मुकतसर साहब के विधानसभा हलका लंबी विच इस्त्री ते बाल विकास विभाग वल्लों वख वख पिंडां विच नवीं भर्ती कीतियां 12 आंगनवाड़ी वर्करां ते 31 हेल्परां नूं नियुक्ति पत्र वंडे ते उन्हां नूं वधाई भी दित्ती। इस मौके श्री खुडिया ने कहा कि पंजाब सरकार वल्लों नौजवानों नूं रोजगार दे वसीले प्रदान करन लई जिथे नौकरियां दित्तियां जा रहियां ने उत्थे ही उन्हां नूं स्वै रोजगार ते आत्म निर्भर बनाउण लई बैंकां राहीं लोन दवाए जा रहे ने तां जो नौजवान वर्ग मशीनरी आदि खरीद के अपना रोजगार चला सके। मंत्री ने भी कहा कि सरकार वल्लों ए भर्ती बिना किसी पक्षपात अते निरोल मैरिट के आधार ते कीती गई है। पंजाब दे समाजिक न्याय अधिकारिता ते घट गिणती मामले बारे मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दस्सिया है कि राज सरकार ने माली साल 2026-27 दौरान पछड़ियां श्रेणियां ते आर्थिक तौर ते कमजोर वर्गां दे 2,669 योग लाभपात्रियों लई आशीर्वाद स्कीम तहत 14.12 करोड़ रुपए की रकम जारी की थी। ए माली सहायता योग परिवारों नूं उन्हां दीआं तीआं दे विआह दे खर्चे गरिमापूर्ण ढंग नाल पूरे करन विच मदद करेगी अते उन्हां दे माली बोझ नूं घटाएगी।

जम्मू कश्मीर में सलाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खराब मौसम कारण 6 दिनों तक मुअत्तल रहने तो बाद आज मुड़ शुरू हो गई। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी खबरों को दस्या है कि यात्रा बालटाल ते पहलगाम दोवां रूटां तो मुड़ शुरू कर दी गई है। यात्रियों नूं सुरक्षित यात्रा लई प्रशासन वल्लों जारी कीतियां गईयां सलाहां दी सख्ती नाल पालना करने लई कहा गया है। क्रिकेट विच भारत अते जिम्बाबे विचकार 3 20-20 अंतरराष्ट्रीय मैचा दी लड़ी दा दूजा मैच अज हरारे विखे खेड़िया जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शामी 4:30 बजे शुरू होएगा। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म हुईयां। साडा xnla@aar.in जलंधर राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुणोगे दोपहर बाद 1:40 बजे। नमस्कार।

0: जी श्रोतो 0164-22-40-331 नंबर डायल करके साढ़े नाल जुड़ चुके ने पहले श्रोता साढ़े अज दे प्रोग्राम दे ते करदे हां जी उन्हां नाल गलबात।
1: हेलो हरी सत श्री अकाल जी।
2: सत श्री अकाल जी, कित्थों बोल रहे हो जी?
1: पिंड बिंदू खड़े बोल रहे हैं कृष्ण कुमार जी।
2: ठीक है जी, तुसी साढ़े प्रोग्राम विच जुड़े हो, कोई सुझाव कुछ बोलना होवे तुसी, कोई चंगा?
1: प्रोग्राम बड़े बहुत बढ़िया चल रहे जी।
2: अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद जी। ते होर कोई सुझाव?
1: गाना लाने गाना अद्धा गाना लाया करो, सारा गाना ना लाया करो जी।
2: अच्छा जी, अद्धा गाना लाया करिए।
1: कोलर बात हो शामिल हो जाते हैं।
2: पर जे थोड़ी पसंद दा गाना है ते तुसी अद्धा गाना सुन के कहो।
1: गाना सारा दिन सुनते रहने, थोड़े प्रोग्राम बहुत बढ़िया गाने आते रहते हैं।
2: अच्छा ठीक है जी, अद्धा गाना, चलो
1: हाँ
2: जी
1: जी,
2: ठीक है,
1: कोलर
2: सुन।
1: बात तो शामिल हो जाते जी।
2: ठीक है जी, नोट कर लिया। ते हुण
1: हाँ
2: तुसी केड़ा गाना सुनोगे?
1: क्रांति फिल्म की सुनने मैं जी।
2: ठीक है जी, थोड़ा जिहड़ा पसंद दा गाना हैगा वो
1: हाँ
2: साडे कोले जी चला रहे हैं, असीं सुनो तुहाडी पसंद दा गीत।
1: ठीक है, शुक्रिया धन्यवाद।

0: हाँ जी सरोते हो 0164 22 40 331 नंबर डायल हो चुके हैं जी। तो गल करते हैं, नवा स्रोता जुड़ चुका है जी, तो गल करते हैं जी। हेलो
1: दूर है आपसे मगर कोई गम नहीं, दूर रहकर भी आपको भुलाने वाले हम नहीं। रोज मुलाकात हो चाहे ना हो तो क्या हुआ, आप दोस्तों की यादें मुलाकात से कम नहीं।
0: क्या बात है जी, क्या बात है, क्या शेयर सुनाया तुसी, क्या एंट्री मारी है इस प्रोग्राम दे विच। ते
1: धन्यवाद।
0: दसो जी तुहाडे केड़ा पसंद दा केड़ी केड़ा गीत सुनोगे तुसी।
1: हाँ
0: हेलो,
1: जी, फिल्म है ये, धरती फिल्म है
0: ठीक है
1: और
0: जी।
1: रफी साहब की आवाज में है। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, और
0: ठीक है
1: अमृत
0: जी।
1: साहब तुसी मेरा नाम तो पूछा ही
0: अच्छा
1: नहीं।
0: जी, नाम दस जी, फिर असि नवे है ना जी, फिर थोड़ा थोड़ा हौली हौली सीखांगे, असि
1: हाँ
0: किवें
1: जी,
0: गल करना
1: बिल्कुल
0: है, हौली हौली फ्लो च
1: बिल्कुल
0: चलांगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही गल है, ये तो पक्की गल है।
0: हाँ जी,
1: क्योंकि जो आप कोई भी आप नौकरी ज्वाइन करते हैं या कोई भी टारगेट हासिल करते हैं,
0: हाँ जी, हाँ
1: उसमें
0: जी,
1: हौली हौली बंदा स्टेप बाय स्टेप और कामयाब होता है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: और मैं अपना नाम दसांगा, बीपीओ कोटली थान सिंह, डिस्ट्रिक्ट जलंधर तो, मिंटू चंदेल
0: क्या बात है जी। सानू तो जलंधर तो फोन आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा,
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: चंगा
1: वाली।
0: लगा तुहाडे नाल गल करके। ते
1: और परमात्मा के, चलो अपना सारे ही जिन्हें भी लिसनर सुन रहे ने, तुसी जो भी तुसी नवे आए हो आरजे एज ए आरजे, और
0: हाँ जी,
1: परमात्मा करे तुहानू बहुत तरक्कियां मिले और इस जो भी तुसी टारगेट हासिल किया है उस विच
0: हाँ जी,
1: हमेशा
0: हाँ
1: कामयाब
0: हाँ
1: रहो।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: मेहरबानी
0: ते
1: मेहरबानी
0: सुनते
1: जी
0: हैं, सुनते हैं तुहाडी पसंद आ गीत।
1: मेहरबानी।

0: न टूटना न रूठना न करना कोई बहाना तुम, न टूटना न रूठना न करना कोई बहाना तुम, मैं हूँ तो सब कुछ है बस खुद को ये याद दिलाना तुम।
1: ते सिर्फ असियो ही नहीं साडे नाल ने साडे स्रोते प्रोग्राम पैगाम दे विच अपने बेहतरीन खूबसूरत पैगामा दे नाल।
0: बिल्कुल 77173 73 146 ते स्रोतियां ने भेजे सानू पैगाम,
1: ते ए सारे ही भेजे हुए पैगाम प्रोग्राम दे विच शामिल करांगा मैं मनदीप रजौरा ते मेरे नाल
0: दीपा छाबड़ा।
1: सुनना ना भुलना स्रोतियो प्रोग्राम पैगाम मिति 26 जुलाई सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत।
0: जी बिल्कुल स्रोतियो अपनी अलार्म घड़ी ते अलार्म ला हेलो 26 जुलाई सवेरे 7 बजे प्रोग्राम पैगाम।
2: प्रोग्रामा संबंधी जरूरी सूचना 26 जुलाई 2026 दिन एतवार सवेरे 10:30 बजे प्रोग्राम सुखन दे वारिस दे तहत तुसी सुनोगे उगे पंजाबी नावलकार मरहूम जसवंत सिंह कंवल होरां दी जीवनी उन्हां दी ही जुबानी। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सो सुनना ना भुलना प्रोग्राम सुखन दे वारिस 26 जुलाई 2026 दिन एतवार सवेरे 10:30 बजे।
3: फाइनेंशियल एमरजेंसी जिस रोतियो एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी एफएम बठिंडा। समा हो रहा जी ठीक 1:42 अते हुण तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम फोन मिलाओ जी। ते स्रोते साडे नाल जुड़ चुके ने, हां जी गल करदे आ। हैलो
4: हां जी गुड आफ्टरनून सर।
3: हां जी हां जी गुड आफ्टरनून जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा।
4: मैं हीरा सिंह बोलता सी इस टाइम लहरा मोबाइल थर्मोपलान बठिंडा तो सर।
3: अच्छा जी, ते तुसी केड़ा गाना सुनोगे जी आज?
4: आज और कल फिल्म दा गाना है सर, ए बादियां ए फिजाए।
3: ठीक है जी,
4: रफी साहब दा है सर।
3: ठीक है जी, चलो
4: सर प्लीज ए गाना मैं ना मलकीत सिंह घड़ी साथ गुजरने वाले नु डेडिकेट कर रहा सर।
3: अच्छा अच्छा ठीक है जी, तुहाडा गाना सी लभ लिया जी, ते हुण प्ले कर देंगे, सुनो तुहाडा पसंद दा गाना।
4: थैंक यू सो मच सर।

0: Championships after defeating Egypt's Barb Same 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Chandu Kumar, clenched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
3: सीआरपीएफ की 32 प्लाटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जा

0: रखने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा।

0: अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
1: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे News on AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और

0: वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 2:30 ਤੇ 19 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ।

0: न टूटना न रूठना न करना कोई बहाना तुम, न टूटना न रूठना न करना कोई बहाना तुम, मैं हूँ तो सब कुछ है बस खुद को ये याद दिलाना तुम।
1: ते सिर्फ असी ही नहीं साडे नाल ने साडे स्रोते प्रोग्राम पैगाम दे विच अपने बेहतरीन खूबसूरत पैगामा दे नाल।
0: बिल्कुल 77173 73 146 ते स्रोतिया ने भेजे सानू पैगाम,
1: ते ए सारे ही भेजे हुए पैगाम प्रोग्राम दे विच शामिल करांगा मैं मनदीप रजौरा ते मेरे नाल
0: दीपा छाबड़ा।
1: सुनना ना भुलना स्रोतियो प्रोग्राम पैगाम मिति 26 जुलाई सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत।
0: जी बिल्कुल स्रोतियो अपनी अलार्म घड़ी ते अलार्म ला हेलो 26 जुलाई सवेरे 7 बजे प्रोग्राम पैगाम।
2: प्रोग्रामा संबंधी जरूरी सूचना 26 जुलाई 2026 दिन एतवार सवेरे 10:30 बजे प्रोग्राम सुखन दे वारिस दे तहत तुसी सुनोगे उगे पंजाबी नावलकार मरहूम जसवंत सिंह कंवल होरां दी जीवनी उन्हां दी ही जुबानी। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सो सुनना ना भुलना प्रोग्राम सुखन दे वारिस 26 जुलाई 2026 दिन एतवार सवेरे 10:30 बजे।
3: जी स्रोतियो, जिवें तुहानू पता ही है कि यह प्रोग्राम तुहाडे खतां ते वट्सएप मैसेज ते आधारित है। शुरुआत करदे हां तुहाडे भेजे खतां नाल। खत मिलिया है जी मखू फिरोजपुर तो बिला बजाज हैपीकपुर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज पिंड त्यौना जिला बठिंडा तो मंगा सिंह बराड़ गुरमेल सिंह बराड़ महकदीप कौर बराड़ करमदीप सिंह बराड़ अमरगढ़ तहसील शादुल शहर तो कुलवंत मान लखविंदर कौर मान खुशप्रीत कौर मान गुरनूर मान हरविंदर मान राजा सिंह मान कुलविंदर कौर मान ते के एस मान कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय ते मोहल्ला दुर्गा प्रसाद वसीलपुर तो जिला पीलीभीत तो बिमल वर्मा नीतू वर्मा ते इन्हां दी प्यारी जी बेटी प्राची वर्मा पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो हरजिंदर शिंदा जस

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-4200-223।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
1: विविध भारती पर मन चाहे गीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में आगे बढ़े, आपकी फरमाइशी गीतों की फरमाइश पूरी करें, उससे पहले जानते हैं आज के जो ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत, उसमें पत्र भेजने का क्या तरीका है और क्या है नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: तो कार्यक्रम मन चाहे गीत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम का पहला गीत किसकी फरमाइश पर सुनवाने वाले हैं ये तो बताएंगे ही, लेकिन वो गीत है मेरे हुजूर फिल्म से, ये आपको पहले बता रहे हैं। और इसकी फरमाइश आई है न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद अहमद रायनी, अबरार अहमद रायनी, शकीला बेगम रायनी, बद्री प्रसाद यादव, सौरभ सोनवानी, एम ए कानपुरी, आर के कानपुरी ने भी इस गीत की फरमाइश यहीं से भेजी है। और दतरंगी भाटापारा से नोखीलाल वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा भी सुनना चाहते हैं मेरे हुजूर।

अब कार्यक्रम का अगला गीत जिनकी फरमाइश पर, जिनकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं, उनके नाम है न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय शीतल, जो कि अपनी पत्नी के लिए ये गीत सुनना चाहते हैं। चार डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, जय कुमार, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू, आप सभी की पसंद पर जहां आरा फिल्म से ये गीत सुनिए। आवाज तलत महमूद की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और जिसके मन चाहे गीत को हम सुनने वाले हैं उनके नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप

वो गीत सुनवा दे। लीडर फिल्म से एक गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, और गीत के बाद बताएंगे कि किसकी पसंद पर सुनवाया ये गीत।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल आपने सुने। नौशाद का संगीत, फिल्म लीडर से ये गीत आपने सुना, और इस गीत की फरमाइश हमें आई थी जोधपुर राजस्थान से मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इजान, सनोवर रानू, हुमेहानी, और साथ ही नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव, ज्योति रानी, गुरमनंत ने भी इसी गीत की फरमाइश की थी। कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं, और अगला मनचाहा गीत है सगीना फिल्म से, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह, सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, आप सभी की पसंद पर सभी को सुनवा रहे हैं सगीना फिल्म से गीत, और इस गीत में आवाज किशोर कुमार की।
1: साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया।

फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे वाह फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे। कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा। मेरा वो सब जाहिल बन गया, इस साल में तो साहब बन गया। अटेंशन, साहब बन के कैसा तन गया।

0: टूटेली या गंगूतेली, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया, साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का।
1: सगीना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और पंकज मित्रा के आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। तो किसी की पसंद पर वो गीत तो हमने सुनवा दिया, लेकिन अगला गीत किसकी पसंद पर है ये आपको बताते हैं। अगला गीत है गिरधारी लाल दुआ, महितपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी पसंद भेजी है। साथ ही सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, इन्होंने भी अपनी पसंद भेजी है। और आप सभी की पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं सिंग इज किंग फिल्म से गीत। लव जैन जुनेजा ने इसे और सुजी क्यू की आवाजें हैं, मयूरपुरी के बोल प्रीतम का संगीत। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

सुजैन डिमेलो और लव जंजुआ की आवाजों में आपने सुना सिंगिस किंग फिल्म का ये गीत। मयूर पुरी ने से लिखा, प्रीतम का संगीत। अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। इतिहास फिल्म से ये गीत सुनने की फरमाइश आई है। मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अजान, सैफ अली खान, मोहब्बत अली, रजाक अली, नथु खान, सेमपुरा बीकानेर से आप सभी हैं, और बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धा नंद केशरी, रोशनी केशरी की पसंद भी है चोरी चोरी। ये गीत सुनना चाहते हैं इतिहास फिल्म से। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद पर।

0: इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: राष्ट्रीय तरंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा नाटक वो मंजिल कहाँ, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: हेलो, रीता स्पीकिंग। जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ। आप? अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता। क्या कहा? कब? अस्पताल? अच्छा अच्छा मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
1: सचिन का फोन था। पापा हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,
3: प्रिय महोदय, आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि हमारे यहाँ भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। आप क्या फरमाते हैं? यस सर, आई रिग्रेट टू से दैट द पोस्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडवर्टाइज्ड बाय अस हैज सिंस बीन फिल्ड अप। हाउएवर, सम पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स आर स्टिल लाइंग वेकेंट। लोअर डिवीजन क्लर्क? और आप किस सिंहासन पर बैठाने वाले हैं? जनाब चंद्रा साहेब, हमारे मदरसे में अंग्रेजी के मुदर्रिस की जगह खाली है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी माली हालत इस वक्त नाजुक है, इसलिए हम आपको फिलहाल 100 रुपया महीना से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी के एमए पीएचडी को 100 रुपया महीना की मास्टरी?
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
3: तुम भी आ गए कंगाली में आटा गीला करने।
4: वो तो आना ही था।
3: पहले सिगरेट तलब करोगे, थोड़ी देर मेरा दिमाग खाओगे और फिर चाय की मांग करोगे।
4: ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे ऑस्कर वाइल्ड ने ही तो कहा था कि जब मैं कर्ज में होता हूँ तो हर खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ।
3: मेरी हालत तो इससे भी बदतर है जाने मन। मुझे 100 रुपये महीने की मास्टरी मिल रही है। जो लोग इस उम्मीद में कर्ज दिए जा रहे थे कि डॉक्टर हरीश चंद्र आज नहीं तो कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, वे भी मेरी मास्टरी देखकर कर्ज देना बंद कर देंगे।
4: अच्छा, वेरी गुड। क्यों हरीश, कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते?
3: कारोबार के लिए पूंजी कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें तो मालूम है अख्तर, पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे वो सब पढ़ाई में खत्म हो गया है। अब सिवा कर्ज के मेरे पास कुछ नहीं है।
5: अरे भाई, क्या साजिश हो रही है?
3: अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो जरूर होगी। क्यों अख्तर? होगी।
5: ओ, जनाब अख्तर साहब, 100 टाइम्स।

0: मैं पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? कोई पार्टी वार्टी है क्या?
1: अरे मियाँ, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। हरीश की बेकारी पर मातम पुरसी करने चला आया था।
0: भाई देखो अख्तर भाई, अगर बेकारी के लिए मातमपुरसी होने लगे ना, तो ये देश मातमपुरसी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरी अपनी राय
1: तो
0: है।
1: और करता भी क्या है?
0: देखो हरीश, ये बेकारी का सवाल तुम व्यक्तिगत सवाल मत समझो, ये पूरे समाज और सारे देश का सवाल है।
2: सचिन, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सवाल नहीं, तो और क्या है? बेकार इंसान को जिन कमियों का सामना करना पड़ता है, समाज में जिन अपमानों का शिकार होना पड़ता है, वे सब इंसान भोगता है, क्योंकि इंसान के मन होता है, आत्मा होती है।
0: हाँ, मैं मानता हूँ ये सही है कि व्यक्ति के मन होता है, आत्मा होती है, और समाज का कोई मन नहीं होता, कोई आत्मा भी नहीं होती। लेकिन मैं फिलॉसफी की चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ हरीश, के इस समस्या का इलाज व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, सामाजिक इलाज से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। ये मेरी अपनी राय है।
1: यानी आपकी नेक सलाह यह है कि डॉक्टर हरीशचंद्र इंकलाब का परचम ऊंचा कर सड़कें नापने का काम शुरू कर दें।
0: जी हाँ, पर अकेले नहीं, बल्कि और बेकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनकलाब के बिना बेकारी खत्म नहीं हो सकती।
2: सचिन, तुम्हारे विचार मैं जानता हूं, तुम हर मर्ज का इलाज अपनी पार्टी के इशारे पर होने वाली क्रांति में देखते हो, लेकिन ये तो बताओ कि क्रांति होने तक बेकार इंसान क्या करेगा?
1: सचिन, ये भी गौरतलब है कि इनकलाब गुत्थियां सुलझाने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से शुरू किए इनकलाब बेहाथ होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाती है।
0: अख्तर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल रिएक्शनरी हो, तुम इनकलाब का ना मतलब समझते हो और ना ही उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता।
2: अरे अरे, ये तुम दोनों ने क्या राजनीतिक अखाड़ेबाजी शुरू कर दी है? यहाँ रोटी रोजी के लिए परेशान है, और आप लोग हैं कि सिद्धांत बगाड़ रहे हैं।
1: करेक्ट सर। सचिन भाई, सुलह की दरख्वास्त करता हूं।
0: बशर्ते कि उसकी घोषणा चाय के प्याले से हो।
1: करेक्ट।
2: अरे वो तो अख्तर के आते ही मैंने कह दिया था कि हजरत पहले सिगरेट मांगेंगे, फिर सर खाएंगे, और आखिर में चाय पर पहुंचेंगे। चलो आप, चलो बाहर चलें।
0: चलो चलो
2: आप
1: चलो यार।
2: रितु, क्या मंगवाए?
3: बस कॉफी।
2: दारा,
4: जी सर।
2: दो कोल्ड कॉफी।
4: बोलो सर।
3: तुम्हारी अर्जियों के कोई जवाब आए?
2: आए, जितनी अच्छी जगह थी सब भर चुकी है, बची है क्लर्की और मास्टरी की जगह, वे खाली है। तनख्वाह भी काफी शानदार है, 100 रुपया महीना।
3: अच्छी नौकरियां भी आखिर किसी न किसी को तो मिलती हैं।
2: जरूर मिलती है।
3: फिर मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं मिलती?
2: प्रोफेसर डॉक्टर मिस रीता सिन्हा, आप बड़ी भोली हैं।
3: अच्छा,
2: रितु, जानती हो नौकरियां किन्हें मिलती हैं? चाचा भतीजे को सबसे अधिक नंबर देता है।
3: तुम भी जाति प्रदेश और रिश्ते की सीढ़ी पर पैर रखकर ऊंची कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते?
2: क्योंकि मैं जाति मानता हूं और न प्रदेश से बंधा हूं, रिश्तेदार कोई है नहीं।
3: तुम मजाक कर रहे हो।
2: मजाक मैं नहीं, मेरी तकदीर कर रही है। क्योंकि मैं न जाति से बंधा हूं और न प्रदेश से, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तानी हूं।
3: हरीश, बेकारी तुम में कड़वाहट पैदा कर रही है। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
2: मेरी सुबह तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में रुकी हुई है रीता।
3: फिर वही बात।
2: रितु, शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेरा सारा खालीपन दूर हो जाएगा, जिंदगी जीने के लायक बन जाएगी। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, वो एक खाली प्याला है।
3: जिंदगी के प्याले में कई चीजें पी जा सकती हैं, उसे शादी के लिए खाली छोड़ देना क्या उचित है?
2: हर आदमी को अलग अलग समय पर अलग अलग प्यास होती है। आज मेरी प्यास दूसरी है, मुझे स्नेह चाहिए। किसी के प्रेम की उंगली पकड़कर मैं ऊपर उठ सकता हूँ, जिंदगी की निराशा और दुख को जीत सकता हूँ, इंसान की तरह खड़ा हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ।
3: अगर मेरे स्नेह से सब मिल सकता हो तो तुम जानते हो वो तुम्हारा है। रहा शादी का सवाल, उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साल दो साल में शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया जाएगा।
2: साल

0: साल ये सजा क्यों?
1: ये सजा नहीं, ये परीक्षा है, कसौटी है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा प्रेम साल दो साल के इंतजार को सह सकता है।
0: तब तक मैं क्या करूं?
2: सर बिल,
1: तब तक बिल चुकाओ।
3: अख्तर, हरीश के मामले में तुम कहां तक पहुंचे हो?
4: मेजर, हरीश को दल में लाना आसान नहीं है।
3: आसान होता तो तुम्हें ये नहीं सौंपा जाता। और ये मत भूलो कि हरीश का नाम तुमने ही सुझाया था।
4: इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया।
3: शायरी नहीं, मुझे रिपोर्ट चाहिए।
4: हरीश ने भी नाउम्मीदी के दौर में पैर रखा ही है। गहरे में पहुंचते ही हम उसे अपने पास घसीट लाएंगे।
3: एक बात ध्यान रखना, जब तक हरीश दिमागी तौर से तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके सामने इनकलाब की बातें मत करना, वो कहीं भागने खड़ा हो।
4: मैं बचपन से उसके साथ पढ़ा हूं मेजर, उसकी नस नस पहचानता हूं। एनसीसी में भी हम दोनों साथ थे। अपने जमाने का वो सबसे बढ़िया कैडेट था, निशानेबाजी में बेजोड़।
3: यही तारीफ सुनकर तो मैं उसे दल में लेने के लिए राजी हुआ हूं। उसके जीवन में कहीं कोई लड़की है?
4: जी।
3: मैं पूछ रहा था, वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है? ऐसे लोगों को खतरे के काम में लाना कठिन होता है।
4: समझ गया, अभी उस पर मोहब्बत की लगाम नहीं लगी है मेजर।
3: फिर ऐसा करो, पुराना नुस्खा ही काम मिलाओ।
4: वो क्या मेजर?
3: अलका से उसकी मुलाकात करा दो, अलका इस काम में उस्ताद है। जयंती लाल को वही तो दल में लाई थी।
4: नथिंग लाइक ट्राइंग इट मेजर, लेकिन साकी के साथ सागर भी चाहिए।
3: यू आर राइट, एंड दैट मीन्स मनी।
4: ऑफ कोर्स।
3: ये लो 100 रुपए, वेस्ट मत करना, अलका से भी कह देना।
4: जी।
3: सुनो सुनो, अलका को हरीश की पूरी बैकग्राउंड समझा देना, और देखो दोनों का परिचय कराकर तुम स्टेज से हट जाना।
4: आप फिक्र मत करें मेजर।
3: ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक।
4: थैंक्स।
5: कहो हरीश, अरे भाई क्या हो रहा है?
6: आओ आओ, बहुत दिन बाद दिखलाई पड़ रहे हो, कहाँ थे?
5: अरे यही था यार, वो रबर फैक्ट्री की हड़ताल में बुरी तरह बिजी था।
6: बाजार में अफवाह गर्म थी कि हड़ताल समाप्त होने को।
5: हाँ, वो तो समाप्त हो गई है। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुमने ऐसा हुलियो क्यों बना रखा? कपड़े मैले, चेहरे पर कई दिन पुरानी दाढ़ी, बाल रूखे, अरे भाई अच्छे खासे मजनू दिखाई दे रहे हो।
6: सचिन, एक बेकार नौजवान से तुम क्या उम्मीद करते हो?
5: अरे यार मैं तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये लक्षण बेकारी के नहीं,
6: बेकरारी के हैं।
5: मैं समझा नहीं। बनो मत, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी इस हालत का कारण बेकारी से अधिक रीता है। मालूम पड़ता है रीता से कोई झगड़ा हो गया है।
6: तुम तो मुझे और रीता दोनों को अच्छी तरह जानते हो। हम में कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ सचिन, रीता चाहती है तो मेरे वजन को हल्का कर सकती थी।
5: वो कैसे?
6: हम शादी कर लें तो मेरा अकेलापन चला जाएगा, रीता के साथ रहकर मैं समाज से लड़ सकूंगा, बेकारी जैसी बीमारियां पैदा करने वाले सामाजिक अन्याय से लोहा ले सकूंगा।
5: अच्छा,
6: लेकिन मुझे आत्मिक शांति चाहिए जो रीता ही दे सकती है।
5: मेरा ख्याल है हरीश, प्रोफेसर सिन्हा तो पहले ही तुम दोनों का संबंध मंजूर कर चुके हैं, फिर रुकावट कहाँ है?
6: यही तो समझ में नहीं आता, जब ये बात उठाता हूँ तो रीता रुकने को कहती है।
5: क्या रीता बदल रही है? मैं पूछता हूँ क्या वो भूल गई कि अगर तुमने जानबूझकर अपने इंटरव्यू खराब न कर ली होती तो नेशनल कॉलेज की लेक्चरशिप उसे नहीं तुम्हें मिलती।
6: छोड़ो इस बात को।
5: पर हरीश, तुमने ये बेवकूफी क्यों की? औरत के लिए नौकरी इतना महत्व नहीं रखती, पर मर्द के लिए वो सिर्फ आमदनी का जरिया ही नहीं, उसके सोशल स्टेटस की बुनियाद भी है।
6: जो कुछ मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं, रीता के लिए मैं क्या नहीं कर सकता।
5: लेकिन वही रीता अब तुमसे इंतजार करने को कह रही है। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास ना कोई ओहदा है और ना कोई आमदनी।
6: नहीं सचिन, तुम रीता के साथ अन्याय कर रहे हो, उसके फैसले के पीछे जरूर कोई अच्छा कारण होगा।
5: ये कारण अख्तर तो नहीं?
6: अख्तर?
5: हाँ, उसे रीता के घर और कॉलेज के चक्कर लगाते अक्सर देख।

0: नहीं हो सकता, रीता उसे हल्का आदमी समझती है।
1: देखो हरीश, तुम हमेशा जल्दबाज रहे हो और शायद जरूर से ज्यादा भोले भी। नारी इतनी सरल नहीं होती।
0: पुरुष ही कहां इतना साफ होता है, स्त्री और पुरुष के गुण दोषों का वजन बराबर बराबर है। मैं क्या खुदगर्ज नहीं हूं जो अपनी आत्मिक शांति की बात सोचकर शादी पर जोर दे रहा हूं? मुझे रीता और उसके पिता की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए।
1: ठीक है। अच्छा हरीश, मैं रीता से बात करूंगा।
0: नहीं सचिन, इसकी कोई जरूरत नहीं।
1: देखो भाई, ये मत भूलो कि रीता मेरी भी फ्रेंड है, उससे बात करने का मुझे भी अधिकार है। खैर चलो तैयार हो जाओ। अरे भाई चलो ना, कॉफी हाउस तक चलेंगे।
0: ऐसा चलो।
2: हरीश ऐसा
3: नहीं, नहीं सचिन।
4: हेलो हरीश। हाय सचिन।
3: हेलो हेलो।
4: किस बात पे खफा है हुजूर कि हम आ रहे हैं और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? अरे मैं तो भूल ही गया, आपसे मिलिए मिस अलका, और आप हैं डॉक्टर हरीश चंद्र MA PhD वगैरह वगैरह, और आप हैं मिस्टर सचिन मेहरोत्रा, मशहूर पॉलिटिकल वर्कर।
3: हाउ डू यू डू।
5: हाउ डू यू डू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई अकदा साहब, से आप लोगों की बेहद तारीफ सुन चुकी हूँ। चलिए एक कप कॉफी हो जाए, आइए ना।
4: कॉफी? श्योर श्योर, क्यों सचिन, ख्याल तो बुरा नहीं है।
3: भाई आज माफी चाहता हूँ मिस अलका, एक मीटिंग है जिसमें पहुंचना जरूरी है, फिर कभी साथ दे दूंगा। अच्छा ओके बाय
5: बाय। और आप डॉक्टर चंद्र?
6: मैं
4: भाई हरीश, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें कहाँ जाना है?
5: आइए ना डॉक्टर चंद्र।
0: चलिए मैं आपकी सेवा में हूँ।
4: दैट्स गुड।
5: बैठिए ना डॉक्टर चंद्र।
4: बैठिए। बेरा बेरा।
7: जी साहब।
4: तीन कॉफी लाओ। कुछ खाओगी अलका?
5: जी नहीं।
4: तुम कुछ लोगे हरीश?
0: मैं कुछ नहीं लूंगा।
4: ओके बस तीन गरम कॉफी लाओ। बेरा
7: अभी लाए सर।
4: हरीश, अलका बढ़िया कहानियां लिखती है, गाना नाचना और एक्टिंग तीनों में कमाल हासिल है।
0: दैट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन।
5: अक्ता साहब तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं, मैं तो नहायत ही मामूली लड़की हूँ।
4: भाई ऐसी बात नहीं है।
7: साहब अभी फोन पर यह संदेश आपके लिए आया है।
4: अच्छा देखो। आई एम सॉरी अलका, मुझे फौरन बुलाया।
0: क्या हुआ?
4: अब्बा जान की तबीयत एक खराब हो गई। सॉरी हरीश।
0: चलो चलो हम भी चलते हैं।
4: नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, उन्हें हर महीने 15 दिन में ऐसे दौरे आते ही रहते हैं। कॉफी के बाद तुम अलका को घर तक छोड़ दोगे हरीश? प्लीज।
5: जी नहीं, इनको क्यों तकलीफ देते हैं, मैं चली जाऊंगी।
0: मैं छोड़ाऊंगा।
4: ओके ओके ओके हरीश, आई एम सॉरी फॉर टीचिंग यू।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
4: ओके
8: रितु, हरीश आखिर गायब कहाँ हो गया?
5: क्यों, क्या हुआ पापा?
8: हरीश का कई हफ्तों से पता नहीं, थोड़े दिन पहले तक मैंने उसे एक बदनाम लड़की के साथ कई बार घूमते फिरते देखा था।
5: समाज तो हर अकेली लड़की को बदनाम करता है, और लड़की के साथ घूमने में क्या दोष है?
8: हाँ साधारण तौर से कोई दोष नहीं, लेकिन रितु वो सचमुच ही खराब लड़की है।
5: लड़की खराब होगी, पर हरीश बहकने वाला आदमी नहीं है।
8: हरीश कितना बहक सकता है ये शाम हम दोनों ही देख चुके हैं रीता। आम सड़क पर एक लड़की की कमर में हाथ डाले नशे में लड़खड़ाते देखकर हरीश के चाल चलन पर शक करने की काफी गुंजाइश है।
5: पापा आपने पहचानने में भूल की है, वो हरीश नहीं होगा।
8: मैंने तब भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो हरीश ही था। इतना ही नहीं, उसने भी हमें देख लिया था, तब से हरीश को किसी ने नहीं देखा। और मैं उस लड़की को भी जानता हूं, उसका नाम है अलका, वो एक्टिंग करती है, नाचती है, गाती है।
5: पापा आपको आज क्या हो गया है, अभिनय नृत्य और गायन को आप कब से खराब मानने लगे?
8: जब से अलका जैसी बच्चन लड़कियों को इन कलाओं की आड़ से शिकार करते हुए देखा है। रीता मेरा विरोध एक्टिंग और नाचने से नहीं है, विरोध है अलका से, वो बच्चलन है। अभी उस दिन DSP मित्रा बतला रहे थे कि पुलिस की उस पर कड़ी नजर है, स्मगलिंग से लेकर चोरियों तक में उसका नाम है, कुछ दिनों से वो एक नए गिरोह के साथ देखी जा रही है। मैं पूछता हूं हरीश का उसके साथ क्या काम?
0: अरे ये क्या, तू तो रोने लगी अगली कहीं की।
5: मैं रोका रही हूं,
0: शायद इन सब के लिए जिम्मेदार मैं हूं।

0: अगर मैं रुकने को नहीं कहता तो शायद हरीश भटकता नहीं।
1: पापा, मैं आपको दोष नहीं देती।
0: दोष मेरा है। मैंने सोचा था कि हरीश अगर बेकारी की हालत में शादी करेगा तो उसे पैसों के लिए तुम पर निर्भर करना पड़ेगा। समाज तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर हरीश की बेकारी पर उंगली उठाएगा। हरीश में हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगर आज आज तेरी मां जिंदा होती तो शायद ये भूल न होने देती। शादी हो जाने से शायद हरीश भी रास्ते से नहीं भटकता।
1: पापा, पापा, हरीश के आदर्श काफी मजबूत हैं। आज अगर भटक भी जाएगा तो उसे ठीक रास्ते पर आने में अधिक समय नहीं लगेगा। अपनी मंजिल वो जानता है। आप जानते हैं, जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ वो हरीश की होती। उसने जानबूझकर इंटरव्यू में गलत सलत जवाब देकर अपना रास्ता बंद करके मेरे लिए जगह की। इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल दीक्षित ने उसे बहुत डांटा था। हरीश उनका प्रिय छात्र था।
0: दीक्षित ने मुझसे भी कहा था, हेतु शायद हर नौजवान में शहीद कहलाने की तमन्ना रहती है।
1: पापा, आप हरीश के साथ अन्याय कर रहे हैं।
0: हाँ शायद इसीलिए, क्योंकि वो मेरी प्यारी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। न जाने वो इस वक्त कहाँ है और किन हालात में है। वो कात कुंडों के गिरोह से बच सकता है। कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता।

0: पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है।
1: हरीश, बेकारी तुमने करवाहट पैदा कर ली। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
2: ये भी गौरतलब है कि इंकलाब खुशियां सुखाने से ज्यादा नई खुशियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों के ये इंकलाब बेहाल होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाते हैं।
3: देखो देखो, तुम हमेशा रिएक्शनरी
0: रहते हो। जैसे अपने तमाम आदर्शों को भुलाकर मैं एक अनजान रास्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल की थी? मैं जानता हूँ मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, और समाज के प्रति मेरा भी अपना कोई दायित्व है। लेकिन अब मैं किस हद तक इसे निभा सकूंगा नहीं कह सकता, नहीं कह सकता।

0: जहन्नुम में ले आए हो। इसे तुम जहन्नुम कहते हो मेरे यार? ये नए जमाने की जन्नत है। हूरे हैं जिनके हाथों में लाल मय से भरे हुए पैमाने हैं। ये जन्नत है तरक्की पसंद नौजवानों की, जो सड़ी गली पुरानी दुनिया को तोड़कर एक नए समाज और एक नए जहां की तामीर करने का दम रखते।
1: शराब पीना और बैंक लूटना, बैंक लूटना और शराब पीना, क्या नई दुनिया बनाने का यही तरीका है?
0: शराब का एक प्याला चंद लम्हों में दुनिया बदल देता है मेरे दोस्त।
1: दुनिया ऐसे नहीं बदला करती, मैंने भी पीकर देखा है अख्तर। हम बदल जाते हैं तो समझते हैं दुनिया बदल गई। दुनिया बदलती है जब कोई बड़ा विचार, कोई ऊंचा आदर्श करोड़ों इंसानों के दिलों में झंझराहट पैदा करता है।

0: और क्रांति का राग बनकर दुनिया को झकझोर देता है। बदबूदार तंग कोठरियों से क्रांति नहीं, सिर्फ बदबू निकलती है।
1: अरीश, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पहले एक्शन में तुम्हारा ये हाल है।
0: अगर रात के अंधेरे में बेगुनाह और बेखबर चौकीदारों की हत्या कर बैंक लूटने वाले लोग बहादुर हैं, तो मैं सचमुच बुजदिल हूँ।
1: जब एक्शन के लिए सब तैयारी हो चुकी है तब तुम्हारा झिझकना गद्दार ही है। अलका बैंक एजेंट को बनाकर चाबियों की छाप ले आई थी, नकली चाबियां तैयार है। 10 मिनट के एक्शन में कम से कम 2 लाख रुपए हमारे हाथ लगेंगे। अलका तो कह रही थी कि तुम तैयार हो।
0: अलका की बात मत करो, मुझे उसके नाम से चिढ़ है। औरत नहीं, वो नागिन है।
1: तुम उसे नागिन कहते हो? तुम जो अपने गले में नगीने की तरह उसे लटकाए घूमते थे। हरीश, तुम पाखंडी हो।
0: शट अप,
1: जुबान संभालो हरीश। पुरानी दोस्ती का लिहाज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर तुमने जहर गोला बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा।
0: शराफत की नकाब उतर जाने के बाद अब तुम्हारा असली चेहरा उभर आया है।
1: हरीश,
2: ये सब क्या है?
1: हरीश गद्दार है मेजर।
2: क्यों हरीश, क्या बात है?
0: मेजर, मुझे इस एक्शन में विश्वास नहीं है, मैं इसे गलत समझता हूँ।
2: तुम्हें ये समझने में इतना समय लग गया? तुम्हारी ट्रेनिंग और खाने पीने पर हम हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के भले के लिए।
0: समाज के भले बुरे का निश्चय करने के पहले समाज की राय भी ले ली जानी चाहिए।
1: ये बकता है मेजर।
2: हम जानते हैं कि जनता की भलाई किस बात में है।
0: आपके कई एक्शन और उसके बाद पैसे के दुरुपयोग को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। आप समाज से भागने वाले लोग हैं जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपनाया है, ताकत का नशा करने के लिए, अपनी स्वार्थी हिंसात्मक भावनाओं को खुलकर खेलने का मौका देने के लिए, औरत और शराब के लिए। आप लोग सफेद पोश डाकू हैं, डाकू हैं आप लोग।
2: हम लोग सफेद पोश डाकू हैं? अख्तर, तुम इस आदमी को हमारा दल मजबूत करने के लिए लाए थे या इसे रास्ते से हटाकर इसकी प्रेमिका को अपना बनाने के लिए?
1: ये आप क्या कह रहे हैं मेजर?
2: काफी दिनों से मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि तुम मिस रीता सिन्हा को अपना बनाना चाहते थे।
1: मेजर,
2: इसीलिए तुमने हरीश के बारे में हमें गलत जानकारी देकर दल में भरने की साजिश की।
1: मेजर,
2: शायद तुम्हारा प्लान हरीश को एक्शन में किसी बहाने गोली मारकर खत्म कर देने का था।
0: अख्तर, तुम जलील हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी।
1: हाँ, मैं जलील हूँ, लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते। मैं तुझे जान से मारूंगा। मैं तुझे जान से मारूंगा।
2: क्या कर रहे हो?
1: ये ले।
3: Uh-huh.

कौन है इतनी रात गए? अरे हरीश, तुम? क्या हुआ? खून? अरे तुम तो घायल हो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं, चल। रिक्शा!

0: हेलो, रीता स्पीकिंग।
1: हेलो, कौन? रीता?
0: जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ।
1: देखो रीता, मैं सचिन बोल रहा हूँ।
0: अरे सचिन। हाँ, मैं हूँ रीता।
1: हरीश को घायल हालत में बड़े अस्पताल ले आया। हाँ, पैर में गोली लगी। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है। वैसे घबराने कोई बात नहीं, आशा को तो जल्दी चली आओ। अच्छा, क्या
0: अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
1: बात है रितु, किसका फोन था?
0: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
1: कहाँ आ गया हरीश? रितु!

0: कैसी तबीयत है हरीश?
1: ठीक हूँ।
0: तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, कहीं तुम्हारा पैर?
1: दोनों पैरों पर चलकर जो मंजिल नहीं मिल सकी थी वो एक पैर पर चलकर मिल गई। ये क्या सफलता नहीं है? तुम मेरे साथ रहो रीता, तो सब मंजिलें मिल जाएंगी और सच्चाई के रास्ते

0: मैं हमेशा चलने के लिए तैयार हूं। मैंने सीधा रास्ता देख लिया है, रास्ता सच्चाई की तरफ है और उसी पर मुझे चलना चाहिए था। काश काश मैंने तुम्हारे और अपने अंतर की बात सुन ली होती, लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है।
1: वो मंजिल कहाँ? अभी आपने डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
2: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
1: सभी सुनने वालों को आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत को। जी बिल्कुल, ठीक मेरे सामने बैठे हैं मुस्कुराते हुए जाने माने फिल्म संगीतकार की जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन साहब, और हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। तो स्वागत है आपका दिलीप सेन साहब जी।
2: नमस्कार जी, नमस्कार विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोता गणों को। दिलीप सेन यानी दिलीप सेन समीर सेन का प्यार भरा नमस्कार।
1: आप कैसे हैं बताइए।
2: बहुत बढ़िया हूँ, वापस आपने याद ताजा कर दी मेरी।
1: जी
2: बरसों पहले आया था तो चाचा भतीजे दोनों साथ में आए थे।
1: बिल्कुल।
2: और इस बार किसी कारण समीर जी के पास वक्त नहीं था, मगर कोई बात नहीं, सवाल तो वही है जो दोनों को बोलने हैं, मैं बोलूं या चाहे वो बोले।
1: बिल्कुल, हम तो आप में ही दोनों रूप देख लेंगे।
2: थैंक यू जी।
1: तो आज उन्हीं दिलीप सेन साहब को सामने बैठा देखकर मैं तो बहुत अभिभूत हूँ।
2: धन्यवाद जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मेरे अतीत में ले गए पुराने।
1: जी,
2: और विविध भारती आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारी चार पीढ़ियां जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी जमाल सेन जी,
1: जी
2: जो 1935 में मुंबई आए थे और एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने ढोलक, डफ, मटका और डेरू जो फिल्म में बजाना उन्होंने ही शुरू किया था।
1: जी जी
2: उस वक्त वो गुलाम हैदर साहब के साथ में लाहौर से आए थे। 51 में उनको पहला मौका दिया केदार शर्मा जी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शोकिया फिल्म से।
1: जी
2: तो पिताजी ने रंगीला, धर्मपत्नी, पतित पावन, आला उदल, कई फिल्में की, बगदाद वगैरह, कस्तूरी, मंचली। उसके बाद में बड़े भाई साहब आए 70 के दशक में, शंभू सेन जी। 80-90 के दशक में हम चाचा भतीजे दिलीप सेन समीर सेन आए।
1: जी
2: 2006 में मेरा पोता सोहिल सेन जी आए, और 2026 में अभी मेरा पड़पोता समर भी आ रहा है।
1: जी
2: तो ये पांच पीढ़ियां हो जाएगी हमारी संगीत
1: जी
2: क्षेत्र
1: जी
2: में।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
2: हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें श्रोतागणों ने, दर्शकों ने और प्यार करने वालों ने, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने, जनता ने इतना प्यार और इतना दुलार दिया कि आज चार पीढ़ियां नहीं, पांचवी पीढ़ी भी संगीत देने के लिए मतलब उत्साहित है।
1: जी, जी।
2: और बहुत बड़ी बात होती है कि 1935 से लेकर 2026 तक अगर किसी का परिवार फिल्म लाइन में सक्रिय है तो वो सिर्फ सेन परिवार है।
1: जी
2: जो जमाल सेन जी से लेके समर तक,
1: जी
2: मैं सेन परिवार का एक अलग योगदान रहा है। वो मैं अलग इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ संगीत ही नहीं रहा। जैसे मैं बेसिकली डांस मास्टर रहा हूँ फोक और कथक का।
1: बिल्कुल,
2: मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी फोक और कथक के डांस मास्टर है।

0: फिर मेरे बड़े भाई साहब मदन सेन जी, जो भी डांस मास्टर सिंगर एज ए कंपोजर रहे, और उनके बाद में तानसेन जी, वो सितार वगैरह बजाते थे। फिर इंदर सेन जी जो थे वो मैंडोलिन वगैरह बजाते थे, उनसे छोटे निहाल सेन, वो सितार मैंडोलिन और डांस वगैरह वो भी करते थे। छट्टा
1: क्या
0: मैं, छठी मतलब छठा मैं
1: जी
0: था दिलीप सेन, तो करते करते निकला। और एक उम्मीद होती है इंसान को कि कुछ बड़ा बनना है, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो संगीतकार बन
1: जी
0: गए।
1: बिल्कुल, और एक बहुत बड़े और सफल संगीतकार, जाने माने संगीतकार के रूप में आप हमेशा रहे। तो आपका घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
0: जी,
1: आपके परिवार का संगीत सफर जो है लगभग 4 या 6 पीढ़ियों से, अब तो
0: अभी
1: कहेंगे
0: छठी हो
1: छठी
0: जाएगी।
1: पीढ़ी से चला आ रहा है, और इस संगीत परंपरा को आधुनिक रूप देने में आपके पिता जमाल सेन साहब का बहुत बड़ा
0: जी,
1: योगदान रहा है। तो आप अपने पिता के बारे में थोड़ा और बताइए, कहाँ से वे।
0: उन्होंने अपने कैरियर को शुरुआत की कलकत्ता रेडियो से। वहां पखावज और जलतरंग बजाते थे, और कलकत्ता में उन्होंने टैगोर साहब के साथ, टैगोर दा के यहाँ
1: अच्छा
0: शांति निकेतन में कुछ साल एज ए क्लासिकल संगीत टीचर के हिसाब से काम भी किया।
1: मतलब टैगोर साहब, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर
0: रविंद्रनाथ
1: साहब।
0: टैगोर जी के यहाँ शांति निकेतन में कुछ
1: अच्छा
0: साल रहे, और वहाँ अपना हिंदी शास्त्रीय संगीत जो होता है, क्योंकि उनका तो रविंद्र संगीत होता है, उनके साथ हमारा जो संगीत शास्त्र है तो वो पिताजी सिखाते थे वहाँ कुछ साल। बाद में 1923-24-25 में वो चले गए लाहौर। वहां पे फिर पंचोली स्टूडियो जो था, जिसमें गुलाम हैदर साहब के साथ एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, और 1935 में वो मुंबई आए। अब मुंबई आने के बाद में उन्होंने एज ए म्यूजिशियन तो काम किया ही किया गुलाम हैदर साहब के साथ में, कुछ फिल्मों में एज ए करेक्टर आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया, खजांची मुनीम जी वगैरह में। क्योंकि मेरे पिताजी का एक पहनावा होता था, वो कान के अंदर लॉन्ग रखते थे,
1: जी
0: उस जमाने में डायमंड सस्ता ही था, तो डायमंड के लॉन्ग रखते थे, बड़ी बड़ी मूछें होती थी, और धोती कुर्ता पहनते थे बंगाली स्टाइल का,
1: जी,
0: तो एक उनका एक अलग व्यक्तित्व होता था।
1: हाँ
0: तो उस हिसाब से उनको काम भी मिलता गया। सुजानगढ़ के रहने वाले हम लोग राजस्थान में, और हमारे यहाँ से और भी बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े कलाकार का नाम मैं लेना चाहूंगा, जिसमें मुझे फक्र होता है, हमारे खेमचंद प्रकाश जी।
1: खेमचंद प्रकाश
0: वो
1: जी
0: भी हमारे ही गाँव से थे, सुजानगढ़ से,
1: जी
0: और एक हमारे कवि, बहुत बड़े कवि हुए, कन्हैयालाल सेठिया जी,
1: बिल्कुल
0: वो भी मतलब हमारी धरोहर है ये
1: बिल्कुल।
0: राजस्थान की।
1: और वही आपके सुजानगढ़ के पास, चूरू से थोड़ा पास, बीकानेर शहर से जो है पंडित
0: हाँ,
1: भरत व्यास,
0: भरत व्यास जी है, गुलाम
1: गुलाम
0: गुलाम मोहम्मद जी हैं,
1: मोहम्मद साहब।
0: और भी आज मैं कहते हुए मुझे फक्र होगा और मुझे अभिमान भी होता है इस बात पे
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: अभी तक जितने भी रिदमिस्ट हुए हैं, आप शुरू से लेके अब तक देखेंगे तो सारे राजस्थान से ही हुए हैं। और एक बात और बता दूं मैं, डांस मास्टरों में भी हीरालाल सोनलाल जी, वो भी सुजानगढ़ से ही थे, जिनका डंका बजता था, जिनके सरोज जी, चिन्नी प्रकाश जी, तरुण जी, कमल मास्टर जी, ये सारे हमारे एक परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया है।
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों को मतलब संगीत के साथ साथ डांस का भी अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज है आज, अगर सुकून वाली, तो वो सिर्फ संगीत ही है।
1: संगीत है जी,
0: और जिसके जीवन में संगीत है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल सही। तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल, सुनिए।

0: तो आपने अपने भाई से शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र जैसे कि तबला आदि की विधिवत शिक्षा ली है और आप एक प्रशिक्षित नर्तक भी रहे हैं।
1: जी हाँ, कथक।
0: तो कथक के आप संगीत रहे कलाकार, तो कथक की दुनिया से, नर्तक की दुनिया से आप संगीतकार के रूप में कैसे इधर आ गए?
1: देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूं कि संगीत जो शब्द बना है ये तीन चीजों से बनता है, गायन, वादन, नृत्य।
0: जी,
1: और गायन, वादन और नृत्य का अनुभव होना, अब तीन चीजों को मिलाने से बनता है संगीत। और संगीतकार इन तीन चीजों को लेके चलना, तो मेरी मेरी ये सोच है या मेरी ये समझ है, मैं अपने आप से कहूंगा
0: जी
1: कि एक संगीतकार बनने के लिए उसको इन चीजों का अनुभव होना जरूरी है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं बेसिकली डांस मास्टर भी रहा और मैं डांस करता भी था, किया भी है। मैंने गोविंदा जी के साथ एक फिल्म मेरी आई थी, अनाड़ी नंबर वन, जिसमें मैंने गोविंदा जी के साथ काम किया, जबकि गोविंदा जी स्टार है
0: जी
1: और सुपरस्टार के अलावा उनके सामने डांस करना इतना मामूली बात नहीं थी। फिर भी सरोज जी ने और उन्होंने निभाया और वो गाना मेरा काफी लोगों को पसंद
0: जी
1: आया, आज भी लोग
0: बिल्कुल
1: देखते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो नृत्य की एक रहा और उससे मुझे कंपोजिशन करने में बहुत
0: आसानी
1: मतलब
0: रही।
1: आसानी रही, क्योंकि देखिए जब मैं कोई गाना कंपोज करता था, मैं और समीर जी जब बैठते थे, क्योंकि समीर जी भी कथक डांस सीखे हुए हैं
0: अच्छा।
1: और उन्होंने भी बाकायदा गणेश जी हमारे हुए हैं, गणेश मास्टर जी से उन्होंने डांस की तालीम ली। क्योंकि अब हम भले ही हमारे भाई से, भाई साहब से हमने सीखा, मगर जब तक बाहर का कोई गुरु आप अगर अपना नहीं लेते हैं, जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती है, क्योंकि घर वाला ही होता है वो, और बाहर वाला जब आता है तो वो एक गुरु की नजर से आता है।
0: जी
1: तो हम लोगों ने वैसे तालीम ली। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप अगर हमारे कुछ गाने देखेंगे तो कोरस प्रधान गाना होता है। कोरस आपको जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं अभी तक, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी संगीतकार ने किया हो। जैसे कि मिसाल पे, जैसे मेरा एक गाना जो हिट हुआ था, पहला गाना हम लोगों का जैसे चला, उससे पहले जुल्म की हुकूमत आ गई थी, उसमें भी
0: लेकिन
1: जैसे जो
0: फिल्म,
1: हिट हुआ था,
0: हाँ,
1: जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, ताक दिना के दिने दिन दिन ना दिने ताक। अब ये दिन ताक दिना दिने गाने का पार्ट ही है। अब जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, टनारंग टनारंग टन टन, ऐसे भी कर सकते थे,
0: बिल्कुल।
1: मगर ताक दिना दिन आने से उसके एक अंदर एक ब्लाइंड हो गया। ऐसे ही एक गाना हमारा और चला था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले ओले ओले, ओले। तो इसमें ओले ओले एक पंच लाइन बने, फिर हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर अर अर अर आ ओरे। तो इस तरीके से जो कोरस पार्ट होता है हम लोगों का, ये एक गाने की शक्ल में ही होता है। ये हमारी दिग्गज जितने भी बड़े जो गुणीजन जिनको मैं स्कूल मानता हूं,
0: जी
1: मेरी नजर में जैसे नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन जी, शंकर जय किशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, खेमचंद प्रकाश जी, मेरे पिताजी, या जयदेव जी, मदन मोहन जी, श्री रामचंद्र जी, बसंत देसाई जी, अपना ये जयदेव जी, सलील चौधरी जी, मैं इनको स्कूल मानता हूं।
0: जी जी
1: क्योंकि ये स्कूल इसलिए मानता हूं, खयाम साहब, इन्होंने जो काम किया है, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी, इनका काम देखेंगे तो एक एक लाइब्रेरी नजर आएगी आपको। जब आप लक्ष्मीकांत जी की तरफ जाते हैं तो वो एक अलग स्कूल है, शंकर
0: जी
1: जय किशन जी एक अलग स्कूल है, नौशाद साहब एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक अलग स्कूल है, ओपी नैयर साहब एक अलग स्कूल है, कल्याण जी अलग स्कूल है, एच डी बर्मन जी एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक, तो ये मेरे लिए एक स्कूल है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती थी। जब हम संगीतकार बने तो संगीतकार बनने के साथ साथ हमने इनको भी फॉलो किया, इनको भी सुना। मेरा ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये सुन रहे हैं
0: जी
1: और जिनको फिल्म लाइन में आके अगर संगीतकार बनना है तो वो बनने

0: पहले अपने गुणीजनों को सुनो कि
1: बिल्कुल
0: हमारे पहले क्या म्यूजिक दिया लोगों ने। देखिए आज का साउंड जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, क्योंकि टेक्नो साउंड भी जरूरी है, क्योंकि समय समय पे संगीत बदलता है, वो
1: बिल्कुल
0: अपना चोला चेंज करता है, मगर मेलोडी जो है, जो हमारी संस्कृति है,
1: वो वही
0: जो
1: है।
0: हमारी रागे हैं, जो हमारा फोक है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो आजकल संगीत के अंदर नहीं मिलता आप लोगों को।
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों ने जो मेरी 90 के दशक तक हम लोगों ने जितनों ने भी काम किया, वो राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, मेलोडी वाइज, हम लोगों ने वो चीज छोड़ी नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर हमको कोई सपोर्ट मिला 90 के दशक में, तो मैं इसकी सारी क्रेडिट, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी जगह है, चाहे वो यशराज हो, गुड्डू धनवा जी हो, कुकू कोहली जी हो, दीपक सरीन जी हो, नरेश मल्होत्रा जी हो, के रविशंकर जी हो, राहुल गुप्ता जी हो, और भी कई लोग हैं, मगर इनमें एक शख्सियत ऐसी थी जिनका नाम है गुलशन कुमार जी।
1: जी
0: गुलशन कुमार जी के आने से म्यूजिक में एक अलग
1: क्रांति आ गई।
0: क्रांति आई, और एक ऐसा बहाव आया कि जिस वक्त आप समझ लीजिए कि 90 के दशक के हम जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या हम लोगों ने जो काम किया, वो आज भी सुना जाता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे कि जब तक हम लोगों ने काम किया, तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा को और हमारे कल्चर को हम लोग संभाल के रख सके।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सेन साहब, जैसा कि बात चल रही थी कि आपका जो घराना है शास्त्रीय संगीत का घराना है, और आप लोगों ने विधिवत शिक्षा ली एक डांसर के रूप में और संगीत के रूप में, पहली फिल्म आपको कैसे मिली जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और किस तरह से 90 के दौर में अपना पहला ब्रेक पाने का जो अनुभव था वो कैसा था, किस तरह से फिल्म मिली?
0: देखिए फिल्म मैं बता दूं आपको, जब डांस मास्टर था, तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं
1: हाँ
0: आपका।
1: हाँ बिल्कुल
0: डांस मास्टर 70 के दशक में क्या था कि 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा चलता था,
1: हाँ
0: और बसों की टिकट होती थी 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा, अंधेरी अगर आना हो तो, बोरीवली से। तो हम लोग क्या करते थे कि डांस मास्टर के नाते कि यार ये 5 पैसा या 10 पैसा बचाना है, तो हम 2 स्टॉप पैदल चल लेते थे, या
1: हाँ
0: कभी 3 स्टॉप पैदल चल ले रहे थे कि यार ये 10 पैसा 5 पैसा बच जाए। तो वो सब समय देखा हुआ था। तो जहन में एक, जब मैं सुजानगढ़ से मुंबई आया,
1: जी
0: तो फिल्मों में एक्टर बनने आया था, तो शक्ल तो हीरो जैसी थी नहीं कि हीरो बन जाऊं, और इतने कोई पढ़े लिखे भी हम नहीं थे कि हम कोई करेक्टर रोल में या निकल जाए। तो पिताजी ने मुझे दूसरी लाइन में पहले ट्राई किया कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, बाद में उन्होंने देखा कि ये कहीं नहीं जमेगा, तो मेरे बड़े भाई थे मदन सेन जी, उनके साथ ऐसे मुझे असिस्टेंट के बतौर रखा लिया कि भाई तू भाई के साथ रहे। तो उन्होंने एक स्कूल खोली, तो वो स्कूल खोलना, उसमें जो बच्चे आते थे उनको अटेंड लेना, उनको देखना। तो देखते देखते 3 4 साल में मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं।
1: अच्छा
0: तो वो जो चीजें थी, तो आगे बढ़ने के लिए एक था कि यार, मतलब उस जमाने में आप यकीन मानिएगा, जैसे 5 रुपया मेरे पास थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में खाता खोला, तो वो मेरे एक सहकारी बैंक थी, तो उस बैंक में मैंने 5 रुपया का खाता खोल लिया। अब 5 रुपये के खाते के लिए वो चेक लगता था, फोटो लगती थी कि जब आप चेक
1: जी
0: लेने
1: जी
0: जाएंगे या
1: जी
0: पैसे दो
1: बिल्कुल
0: के 2 रुपया या 1 रुपया या 8 आना लेना है,
1: बिल्कुल
0: तो बैंक में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से फोटो दिखानी पड़ती थी। तो एक बहुत लिमिटेड बजट होता था और बड़ा आदमी बनना था। तो मैं अक्सर, मेरे जो पार्टनर समीर सेन जी हैं, ये परकशन में नंबर 1 है, इंडिया के एक माने हुए परकशन्स हैं, जो कि रिदम में, मतलब अभी भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे ढोलक, तबला, कोंगो, बोंगो, तुम्बा, ये जो वो प्ले करते हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी में कोई ऐसा म्यूजिशियन हो।
1: जी
0: वो इसलिए नहीं कि मेरा भतीजा है,
1: नहीं, जो
0: क्योंकि
1: सच्चाई
0: जो
1: में।
0: उनकी अपनी मेहनत थी, लगन थी, बड़े भाई साहब ने उनको उस तरीके से तैयार किया था, उनको तालमनी टाइटल भी मिला हुआ है। मैं उनसे अक्सर बोलता था कि यार बड़ा आदमी बनना है यार। तो बोले क्या बड़ा आदमी कैसे बनोगे चाचा, तुम डांस मास्टर हो, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या बनना चाहते? तो मैं बोले यार अपन संगीतकार बन जाए।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: तो 80 के दशक में संगीतकार बनना इट इज नॉट जोक। उसने बोला यार मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है म्यूजिशियन में, मैं दिन में दो दो तीन तीन टेक बजा रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उस वक्त 150, 200, 300 रुपया म्यूजिशियन को एक गाने का मिलता था, वो 3-4 गाने बजाए तो 1,000 रुपया रोज
1: कमा
0: मिल
1: ले
0: जाता था।
1: जी।
0: बोले ये खामा का म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, लोग बुलाना भूल जाएंगे। अरे मैं बोला कोशिश तो करके देख, तो वो माने नहीं। तो उस दौर में क्या हुआ कि मैं रहता था महाकाली में, शमशाद खान इकबाल खान के यहाँ। तो वो एक फिल्म बना रहे थे प्यारी भाभी, तो एक उम्मीद थी कि यार ये फिल्मी प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं पहली मरतबा उनके यहाँ लग गया कि चलो यार इन्हीं के यहाँ रहता हूँ थोड़ा।

0: माहौल भी मिलता था। वहां असद भोपाली साहब आते थे
1: अच्छा गीतकार।
0: गीतकार। तो असद भोपाली साहब जब मुझे देखते थे, वो कोई लाइन लिखते थे तो मैं उस पर कोई ऐसी डमी धुन बना देता था। तो मुझे हर बार शाम के वक्त जो बैठक होती थी इन लोगों की, बड़े लोगों की, हम तो खैर बच्चे थे उस वक्त, तो उस बैठक में मेरे को मौका मिलता था उनको धुन बना के सुनाने का। कभी कभी वो दिन में मुझे बोलते थे, यार तेरे में जम्स है, तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, तेरे पिताजी वाली बातें हैं तेरे में, क्योंकि मेरे वालिद साहब के काफी नजदीक में थे वो।
1: जी
0: तो मैं असद वाली साहब को बोला, मैं चाचा कौन, मुझे कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। उन्होंने एक दिन एक सीटिंग रख दी, बोले काम कर, 2 दिन बाद मैं तेरे को एक जगह लेके जाऊंगा। मुझे बताया नहीं कहाँ ले जाएंगे। मैंने जाके समीर जी को बोला, समीर सेन जी को, मैं बोला बेटा ऐसा ऐसा है, समीर यार एक जगह सीटिंग है, अपने को फिल्म मिल सकती है। तो वो हंसने लगा, भाई साहब हंसने लगे, बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी।

0: को फिल्म मिल सकती है, तो हंसने लगा भाई साहब, हंसने लगे,
1: हम्म,
0: बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी आ गया जो तुमको लेगा। मैं बोला जाके आने में क्या बुराई है, बोले जाओ। तो हम गए साहब, हम लोगों को सोचा कि शायद ये तो म्यूजिशियन है, कोई इनका बड़ा आदमी आएगा तो सुनाएगा। तो हम लोग 10-11 बजे गए, तो 3-4 बजे तक कोई हमारी से सुनवाई नहीं। तो असद भोपाली साहब ने जगदीप साहब को बोला, यार जगदीप तुम आ जा गाने सुन ले। तो बोले इनका कौन सुनाने वाला कौन है इनमें, बोले यही बच्चे, बोले ये बच्चे सुनाएंगे, ये तो किसी एंगल से ही लग रही थे मुझे डॉक्टर, वाकई में नहीं लग रहे थे।
1: जी
0: अब इस एंगल में तो कोई शक्ल तो थी नहीं हमारी,
1: बिल्कुल,
0: और दुबले पतले से थे हम। तो खैर उन्होंने जब सुना, सुनने के बाद में आप यकीन मानिए, हम लोगों ने 4 साढ़े 4 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए। 12-1 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो गाने तो तुम्हारे काफी अच्छे लगे हमको, हम खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि इसमें से कौन सा ओके करें कौन सा नहीं करें, आप सुबह आ जाइए, आप हमारी फिल्म कर रहे हैं। तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम सुबह पहुंचे, उस वक्त मैं जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे मोहब्बत, जिसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित और जगदीप साहब थे।
1: जी,
0: तो वो शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं घर पहुंचा, बोला भैया तुम लेट हो गए हो, मैं तो निकल रहा हूँ, बच्चे लोग हैं तुम अंदर चले जाओ। तो हम अंदर गए, तो एक छोटा सा लेटर था, वो साइन करवाया हमको, एक छोटा सा लिफाफा दिया। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं बोला भाई पिक्चर मिल गई। तो आप यकीन मानिए कि वो खुशी खुशी हम खुश हो गए।
1: वो फिल्म सुरमा भोपाली
0: सुरमा
1: थी।
0: भोपाली था, मगर इस बात के लिए मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा जगदीप साहब को, उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि एक सिचुएशन पे एक ही मुखड़े की कितनी धुन बन सकती है। तो ये स्टाइल उन्होंने सिखाया मुझे, तो मैं उनके यहाँ सीखता गया, उन्हीं के यहाँ मैंने एडिटिंग सीखी, उन्हीं के यहाँ मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा, फोली क्या होता है, जो इफेक्ट वगैरह होते हैं फिल्म के, यानी टोटल मेकिंग जो होती है फिल्म की, वो 5 साल में मैंने जगदीप साहब के यहाँ सीखी, जो मुझे बाद में इतना बेनिफिट की वो चीज कि आज जब मुझे, मतलब जब मैं सक्सेस हुआ, तो मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं जगदीप साहब का भी हाथ है।
1: जी
0: जैसे गुलशन जी को हम मानते हैं,
1: जी जी
0: मगर कंपोजिशन है बनाने में जगदीप साहब का हाथ रहा। तो आज अगर एक सिचुएशन आती है, तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप बुरा ना माने तो सुनाना चाहूंगा,
1: बिल्कुल,
0: हमने ये दिल्ली के सारे गाने कंपोज कर लिए थे। तो
1: हाँ
0: यश जी ने कहा कि मुझे तानसेन बोलते थे, बोले
1: जी
0: तानसेन मेरा ये जो लड़का है ये करोड़पति घर का है मगर प्ले बॉय है। तो प्ले बॉय मतलब, मैंने वो क्या होता है, बोले बिगड़ा हुआ। तो मैंने समीर राइटर जो हमारे अनजान है, मैं बोला यार बिगड़ा हुआ लड़का करोड़पति का क्या अलग होता है, या वो झोपड़पट्टी का अलग होता है क्या, ये बिगड़ा हुआ क्या कर, बोला ये भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला गरीब वाला, बोला ये झोपड़पट्टी वाला भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला यार धुन क्या बनेगी, तो हमने इसकी जगह धुन बनाई एक, पहले प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कु आई लव यू तू नाक धुन तू धुन तू नाक धुन तुम,
1: बिल्कुल,
0: फिर उसके बाद में एक धुन इसी सिचुएशन पे बनाई, वो ये दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो, फिर इसी सिचुएशन पे तीसरा गाना हमने बनाया अपना, ये जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मगर हम अक्सर ये दो धुनें यश जी को सुनाते थे, ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो इसका ये रहा कि ये हमको 2-3 महीने हो गए अब ये गाना, बाकी गाने सब कंपोज हो गए। यश जी का क्या सिस्टम था कि सारे गाने कंपोज करवा लेते थे, और सारे गानों की राइटिंग और धुन और म्यूजिक तक फाइनल करके फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे। ऐसे ही हमने आईना की थी, तो सेकंड पिक्चर के लिए भी सारे गाने कंपोज हो चुके थे, खाली ये एक बचा था। तो ये हम सुनाते नहीं थे, क्योंकि इसका जो वर्ड था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, मैं बोला कहीं यश जी ये नहीं पूछ ले यार ये
1: ये
0: ओले ओले
1: ओले
0: क्या
1: ओले
0: है,
1: क्या है,
0: तो फिर क्या जवाब दूंगा।
1: जैसे इलू इलू क्या है, ये प्रश्न
0: नहीं
1: उठा था।
0: ओले तो देखिए, ओले मराठी में ओले बोलते हैं गीलेपन को,
1: अच्छा,
0: और वैसे ओले जो गिरते हैं।
1: इस पर मैं बात करूंगी आपसे, क्योंकि ये गीत कैसे रचा गया था। पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं, आप बताइए और थोड़ा गा के सुनाइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप अपना
0: मैं
1: ही।
0: आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं इनको, अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को।
1: अच्छा,
0: इनका एक गाना मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, वो इसलिए पसंद है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है,
1: अरे,
0: ये जो अंदाज था उनका, ये कमाल था
1: तो ये गीत सुन ले,
0: जी।
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो बात चल रही थी दिलीप सेन साहब की गाना कैसे बनते हैं। आपने कहा कि आशा भोसले की आवाज में आपने पहला गीत ये रिकॉर्ड किया था जिसका जिक्र, तो उनके साथ आशा ताई के साथ काम करने का ये जो नया नया अनुभव था जब आप बिल्कुल नए थे, कैसा रहा?
1: मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि मंगेशकर परिवार जो है, मेरे परिवार से वाबस्ता तो था ही, क्योंकि पिताजी को जानते थे, फिर
0: जी
1: बड़े भाई साहब को जानते थे,
0: जी
1: तो वो एक रिस्पेक्ट, वो प्यार तो था उनके दिल में।

0: मगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो जब उनके साथ बैठने से पता चला। पर आचार्य जी ने जब ये गाना सुना तो नौशाद साहब आए हुए थे, तो गाने सुनने के बाद में समीर उनके साथ काम करता था पहले, अब मुझे देख के खुशी भी हुई कि ये डरा डरा साहब बोल डर नहीं, अच्छा कर रहा है, तुम बहुत अच्छा करता है। नौशाद साहब को बोला कि नौशाद साहब ये गाना उल्टा लग रहा है, तो फिर समीर जी को बुलाया उसने, आशा जी बोला समीर इधर आ, ये गाना क्रॉस से आता है तो उल्टा हो जाता है। समीर ने जब देखा बादल सताए हम लोग गाना लगा, तो मेरे को समीर बोलता है यार गाना तो उल्टा हो गया। तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे मेरे साथ, तो भाई साहब बोले भाई तू गाना बनाया, तेरे को बनाते वक्त ध्यान नहीं था, अब इसको सम में कैसे लाएगा। मैं बोला भाई साहब ये 8 मात्रा का नहीं है, 4 मात्रा का है। बोले 4 मात्रा कैसे, मैं बोला लेजिम ठेका है, दिन ताक दे दिन आग दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन, तो 4 बीट का गाना है
1: अच्छा
0: ये, जो लेजिम एक आते हैं हमारे मराठी में, आपने देखा होगा बच्चों को सिखाया
1: हाँ
0: जाता है,
1: हाँ हाँ
0: तो मैं बोला उस ठेके पे बना हुआ गाना है ये,
1: जी
0: 4 बीट का ही है, तो आप सम 4 बीट में लोगे तो ये परफेक्ट आएगा, आप 8 मात्रा में गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो
1: हाँ
0: इस तरीके से वो रहा, तो आचा जी इस बात को नोट करती रही और उनको लगा, उन्होंने
1: कि एक नई बात है।
0: नहीं नई बात के अलावा उन्होंने समीर को बोला कि यार लगता है तेरे चाचा में कुछ बात है, तो ये उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ रही। और
1: जी
0: मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक सपना होता है, बाकियों की बात नहीं कहूंगा मैं अपनी करूँ, कि जिन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ काम किया, जैसे लता जी के साथ आशा जी के साथ काम करना एक एक ड्रीम होता है, और वो ईश्वर ने यशराज फिल्म में मेरा कंप्लीट किया
1: जी
0: कि दोनों बहनों के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया,
1: जी
0: आईना और ये दिल्लगी में।
1: जी तो आप कितने भाग्यशाली रहे दिलीप सेन साहब कि एक शुरुआत में ही आपको यश जैसा बड़ा बैनर
0: बैनर
1: मिला यश
0: मिला
1: चोपड़ा जी का, और आईना और ये दिल्लगी जैसी फिल्में मिली, आशा जी और लता जी के साथ गाने का
0: मौका मिला,
1: मौका मिला, बहुत बड़ी बात थी आपके
0: बहुत
1: लिए।
0: बड़ी नहीं
1: तो
0: ड्रीम था, सपना
1: ड्रीम
0: था।
1: मतलब पूरा हो गया इतनी जल्दी, जो उम्मीद भी नहीं होती, तो कैसा लगा होगा, आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, और लता जी के साथ काम करने का भी कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए आप।
0: देखिए दीदी के साथ तो पहले पहला तो मैं ये कहूं कि दीदी की एक आदत थी कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती थी,
1: अच्छा
0: बात करने से पहले चश्मे को थोड़ा नाक पे लेती थी, फिर
1: अच्छा
0: ऊपर करके कसा बरा ठीक है, इतना सॉफ्ट बोलती थी।
1: जी
0: तो पहला गाना जब मैंने उनके साथ किया था गोरिया रे गोरिया रे, तो क्योंकि डरा हुआ था तो एकदम खुल के बैठ भी नहीं सकता था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा तक धिना के दिन दिन तिन ना, उन्होंने वैसे ही गा दिया।
1: जी
0: अच्छा मुझसे इन लोगों ने कहा था, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो दीदी अकेली थी जब उनकी डबिंग के वक्त, क्योंकि उस वक्त ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मुझे ये कहा गया था कि बार बार टॉक टॉक बैक से इनको बोला नहीं जाता था,
1: अच्छा
0: दीदी से अगर कुछ बात करनी हो तो आपको कट करके फिर उनके रूम में
1: जाके ही
0: जहां पे सिंगिंग रूम है वहां जाके बोलना पड़ता था। तो मुझसे कहा गया था बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुपचाप बैठे रहो गाना होने दो। गाना पूरा हो गया तो मैं ऐसे रहा नहीं गया, फिर मैं उठ के गया दीदी को हाथ वाथ जोड़े, तो दीदी ने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए, पूछा कैसा ठीक हो गया। बोला दीदी गाना तो बहुत अच्छा हो गया मगर एक जगह रह गई। फिर वो जरा क्वेश्चन मार्क से मेरी तरफ देखी, बोले मेरे से जगह रह गई, क्या रहा जगह कैसे रह गई, कोई सुर कम लगा। मैं बोला नहीं नहीं सुर कम नहीं लगा, वो मींड रहेगी। बोले कैसे, बोला आपने गाया सजना वे मेरे नींद अकेले जा तक दिन आगे दिन, बोला हाँ ऐसे ही तो गाया है। मैं बोला यहाँ ये एक बार मेरा रह गया, तू कैसे चाहता था। मैं बोले सजना वे मेरे नींद अकेले जा तक, तो मैं बोला ये ले जा
1: हाँ
0: तक, अच्छा हाँ ठीक है मैं गाती हूँ। मैं बोला नहीं अब तो मेरे को गुस्सा करेंगे, रहने दीजिए हो गया, नहीं तो पूरा गाना गाना पड़ेगा। हाँ बोले मैं गाऊंगी ना, मतलब इतनी बड़ी स्टार सिंगर,
1: नम्रता, इतनी
0: नम्रता के
1: विनम्रता,
0: अलावा उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं नया कल का
1: नया।
0: लौंडा हूं, जबकि उन्होंने मेरे पिताजी भाई साहब और उनके अलावा दिग्गजों के साथ काम किया हुआ,
1: लेकिन एक महान
0: मगर उन्होंने
1: कलाकार।
0: ये देखा कि ये बच्चे ने काम किया है और ये जगह उसने सही बनाई है, तो मुझे इसको डोमिनेट नहीं करना है। उन्होंने सीधा प्रेम जी को बोला, टैगोर को बोला आप ये दोबारा करो मैं गाऊंगी, तो गाया और वो गाना कमाल हुआ।
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो ये दोनों बहनों में ये बहुत खास बात थी कि इतने प्यार से। और एक किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूँ दीदी का, हम जब सेकंड पिक्चर कर रहे थे ये दिल लगी,
1: ये दिल्ली की
0: तो उसमें एक गाने के लिए आई थी वो गोरी।

0: ने लिया तेरा नाम ओ सजना।
1: वाह, बहुत सुंदर।
0: तो दीदी को 12 बजे का टाइम हमने दिया था, तो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी फिएट, तो हमको 12 बजे के बजाय 12:15 तक हम लोग पहुंचे। मैंने जाते ही दीदी के पैर छुए, माफी आफी मांगी, तो फिर बैठी हुई गाना सुन रही थी। बोला नहीं, ठीक है, दूर रहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं गाना सुन लिया है, बोल कैसे क्या करना है। मैं बोला ऐसा ऐसा है, गाना हो गया। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। तो मेरी तरफ देखी और बोली क्यों, मैं अच्छा नहीं गाती क्या, गाने में 3 लाइन ही मेरी रखी है। मैं बोला नहीं दीदी वो गाना ही ऐसा है। कैसा है? तो गाना 3 सिंगरों का था। लगी

0: से दिल लगी, सुना उन्होंने, मैं बोला इस तरीके से, तो गाना ये भी हो गया। मैं बोला दीदी खाना आ रहा है गहलोत से, बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। बोला क्यों, तूने धुन नहीं बनाई? मैं बोला नहीं, आपका एक गाना था ना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा तो हम चलते हैं, तो बोले क्या तूने वो चोरी किया है धुन? मैं बोला नहीं चोरी नहीं की है, मेरा गाना सुन लीजिए आप, वो कैसा है? मैं बोला नाम क्या है प्यारे का मारा, घर का पता दो, दिल
1: दिल
0: है
1: है
0: तुम्हारा,
1: तुम्हारा।
0: क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यारे का मारा। ये भी सुना उन्होंने, सुनते ही बोला ठीक है अच्छा है, नया स्टाइल है, गाती हूँ। ये भी गा दिया उन्होंने। तब तक खाने में थोड़ा और लेट
1: टाइम
0: हो रहा
1: लग गया।
0: था।
1: हाँ
0: मैं बोला दीदी अब खाना आने ही वाला है, एक काम कीजिए, एक गाना सिर्फ आप सुन लीजिए, गाएंगे नहीं।
1: हाँ
0: बोला क्यों, तुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं? मैं बोला दीदी बहुत है, ये मेरे दिल
1: जी
0: के करीब है। बोला अच्छा, तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, जब कोई गाना है, उस दौर में जब ये ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मैं अपनी वॉइस में गा के रख देता था कि अगर मैं थोड़ा लेट हूं तो सिंगर वो गाना सुन के लिख भी लेता था और धुन भी याद हो जाती थी। तो मैंने मैंने बोला एक रफ गाया है मैंने, सुन लीजिए आप। तो गाना इस तरीके से था।

0: जानम आई लव यू लव। जब ये अंदाज उन्होंने सुना तो
1: जी
0: 2 मिनट तो मेरी तरफ देखी, फिर मुस्कुराई, लाचा लिखा मुझे। लिखने के बाद में उन्होंने दमन सूद साहब से बोला कि सूद देख ले, अगर मेरी वॉइस क्रैक नहीं होती हो तो एक ट्राई करके देखते हैं। मैं बोला रहने दीजिए दीदी, क्योंकि अब आप भी थक गई होंगी 3 घंटा। बोले नहीं, ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। अब उन्होंने वन टेक में ही गाना परफेक्ट गा दिया,
1: क्या बात
0: गाना हो गया। उसके बाद में जब तक खाना आ गया था तो यश जी भी आ गए थे। तो
1: जी
0: यश जी बोला यार मैं तो एक गाने के हिसाब से पेमेंट आया, तुमने तो चारों कर दिए। अरे
1: जी
0: ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ कि दीदी ने, लता दीदी ने एक ही स्टूडियो में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का,
1: चार
0: एक ही
1: गाने,
0: समय में 4 गाने गाए हूं।
1: क्या
0: ये मेरे
1: बात,
0: लिए बहुत
1: ये
0: नसीब
1: क्रेडिट आपको गया
0: जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात रही। और
1: जी
0: मैं समझ रहा हूँ शायद दुनिया में ये पहला ऐसा मौका रहा होगा दीदी के लिए।
1: जी

0: फिर खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैं ये बात आपके रेडियो के माध्यम से पब्लिक तक जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा कि देखिए सिंगर ऐसे ही बड़ा नहीं बनता है,
1: जी
0: सिंगर के कुछ नियम होते हैं जो कि हर आज नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से हर बार बोलती, क्यों, उनकी एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाता, फिर बोलती थी एक बार और, ऐसे करके 5-6 बार सुनती थी।
1: अच्छा
0: तो मैंने कहा कि दीदी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से बोलती थी कि एक बार और एक बार और? तो हंसने लगी, बोले दिलीप मैं गाना तो सुनते ही मुझे याद हो जाता है,
1: अच्छा
0: मगर मैं गाना बार बार इसलिए सुनती हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना बनाता है उस वक्त वो अलग शक्ल में होता है, फिर उस पर वो गाना लिखता है तो वो अलग शक्ल बन जाती है, फिर वो गाना डायरेक्टर तक जाता है तो उसकी और शक्ल अलग हो जाती है, फिर वो प्रोड्यूसर सुनता है तो और शक्ल हो जाती है, फिर म्यूजिशियन के पास आते आते और अलग हो जाता है, और जब सारे म्यूजिशियन मिक्स होके करते हैं तो वो परफेक्ट एक सॉन्ग बनता है, तो म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर वो पूरा गाना वार्म अप हो जाता है। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के एक्सप्रेशन नोट करती हूँ कि वो गाते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव क्या हो रहे हैं
1: क्या बात है,
0: और कौन से शब्द पे वो सांस ले रहा है, कौन से शब्द पे उसके चेहरे के क्या हाव भाव चेंज हो रहे हैं, तो मैं वो ऑब्जर्व करके फिर अपनी फील देती हूँ।
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: ये आज के सिंगर को हमेशा होना चाहिए कि आप जब गाना गाना आते हैं

0: भी म्यूजिक का, चाहे वो नया म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे पुराना हो, या आपके बराबरी हम दोस्त भी हो, आप पहले गाने को सुने, उसकी सिचुएशन सुने, प्लस उसके एक्सप्रेशन के अलावा, क्योंकि जो शब्द आप गाओगे वही एक्सप्रेशन देगा आपका हीरो
1: बिल्कुल
0: या हीरोइन।
1: बिल्कुल
0: तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि भाई मैं जिस तरीके से गाऊंगी वही एक्सप्रेशन डांस डायरेक्टर वहां पिक्चराइज करेगा, वही एक्सप्रेशन हीरो हीरोइन देंगे। तो वो अच्छा, लोकेशन भी पूछना चाहिए, पिक्चराइजेशन का समय भी पूछना चाहिए, जैसे कि पुराने सिंगर पूछते थे, अच्छा कहाँ हो रहा है, नाइट में हो रहा है या डे में हो रहा है, आउटडोर हो रहा है कि इंडोर हो रहा है, नदी के किनारे हो रहा है कि गार्डन में हो रहा है, कि बर्फीली पहाड़ियों में हो रहा है,
1: क्या बात,
0: कि खंडर में हो रहा है, कि डेजर्ट में हो
1: वाह
0: रहा है, कि
1: सुनो,
0: रेतों में। तो ये जो सिचुएशन है पहले पूछते थे
1: मतलब इतनी गहराई में जाना होता है एक कलाकार को, एक सिंगर को,
0: जी,
1: एक
0: वो
1: संगीतकार को।
0: जिस तरीके से संगीतकार जाता है, जैसे मैं
1: और
0: जाता था,
1: गीतकार भी जाता होगा निश्चित रूप से
0: गीत
1: जब
0: नहीं नहीं
1: गीत लिखता
0: डेफिनेटली
1: है।
0: हमको सबको जाना पड़ता है
1: हाँ
0: उसमें, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जो कंपोज हम करेंगे, जो शब्द हम कंपोज करेंगे, जो भाव सिंगर देगा गाने में, जैसे उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब गाना गवाते हैं सिंगर से, तो गाना तो उसी वक्त याद हो जाता है, मगर उसको डबिंग करते वक्त 2-3 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होते हैं शब्द के, हम वो उससे करवाते हैं। जैसे कि एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, जैसे हरिहरन जी, चित्रा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए सिंगर हैं, दोनों क्लासिकल के माहिर हैं। तो
1: चित्रा जी,
0: चित्रा जी मद्रास के, साउथ की जो
1: चित्रा
0: है,
1: केएस
0: हम चित्रा जी बोलते हैं
1: जी
0: उनको,
1: जी
0: उनका जब मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी जिद्दी, तो मेरा गाना था, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए।

0: हमसे
1: क्या
0: नो,
1: बात है, बहुत
0: तो ये
1: सुंदर।
0: गाना उन्होंने 2 घंटे में गा दिया।
1: जी।
0: जब सैम दोनों सिंगर मेरी फिल्म आई अफलातून, जिद्दी में भी डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, बबुल पची जी जी प्रोड्यूसर थे, अफलातून के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी। तो उसका एक गाना था,

0: बहुत गहरा गाना
1: अब
0: था
1: ये
0: ये।
1: गाने में उनको 4 घंटा लग गए। अब होता क्या है कि जब आप किसी बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं तो आप बार बार कट नहीं कर सकते हैं।
0: जी
1: तो आपको क्या है कि उनके रिस्पेक्ट को भी रखना है, उनकी जो ओहदा है, जो उनकी पोस्ट है
0: उसको भी रखना है।
1: उसको भी कायम रखना है, और हमें हमारी जो चीज चाहिए वो भी निकलवानी है। तो उसके लिए क्या करता था मैं, आधा घंटा 15 मिनट किया, फिर मैं ब्रेक ले लेता था। फिर उन लोग पूछते थे क्या हुआ, मैं बोला नहीं मैं 1 मिनट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। फिर जाता था उनके कैबिन में, हॉल में जाके फिर बैठते थे, आइए जरा 2 मिनट बैठते हैं, क्या हुआ सर कुछ, नहीं नहीं मैं बोला बहुत बढ़िया हो रहा है,
0: जी
1: उनको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या कमी हो रही है। फिर बैठ के बातचीत करते थे, फिर बातों बातों में बोला जैसे ये जगह ना, पलकों के साए में सो जा तुम, फिर उधर थोड़ी सी बातें मैं अंदाजे से ही बता देता, ऐसा नहीं बताता था कि आपसे नहीं निकल रहा है। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं अपन लोग, हाँ हाँ सर कर सकते हैं, मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं, जाओ तुझे मैं छुपा लूं, ओ, तो ये मुर्गी रिमेंड ये भी आ सकती है शायद, हाँ आ सकती है सर। तो जैसे बच्चों को कैसे हम लुबराते
0: जी
1: हैं,
0: साइकोलॉजिकल।
1: तो वैसे उनके, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ या इतने बड़े सिंगर को आप बार बार अगर ऐसे करेंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए, प्लस कहीं फंस ना जाए। अच्छा सिंगर अक्सर ऐसा फंस जाते हैं, वो लूप अगर लग गया उनको तो फिर अटक गए तो अटक गए।
0: अटक गए
1: तो बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करके उनके साथ वो निकलवा के, क्योंकि वो इस काबिल थे और
0: थे बिल्कुल।
1: काबिल हैं।
0: चलिए गीत सुनते हैं, पहले आपकी पसंद का।
1: आप वो गाना लगाइए जिस गाने को दीदी ने बड़े प्यार से गाया है,
0: जी

आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: पर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके?

0: पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और आ
0: गया एक और आ
1: गया। कहा
0: गया।
1: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
2: अरे ललन मियां आप काट दिया ना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।

साध संगत जी दूर जान दी लोड नहीं। 1922 विच गुरु के बाग दे मोर्चे अंदर सिखा ने जिस तरह शहीदियां पाईया उन्हां दा जिक्र करदे होए अंग्रेज पादरी सी एफ एंड्रयूज ने कहा, इस धरती पंजाब विच तसीहां दा सामना करके नवें सिरे सूरम

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 14555 ते कॉल करो।
1: मैं निशांत कुमार, आप सब का बहुत बहुत स्वागत करता हाँ अज इस प्रोग्राम युवानी विच। ते आज तुसी सुनोगे प्रोग्राम युवानी तहत मेरिया गल्लां मेरे की, ते उस दे नाल आपां गलबात करांगे अज दे विशेष दिनां दी। सो अज है वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे, यानी कि विश्व डुबन रोकथाम दिवस। ए हर साल 25 जुलाई नू मनाया जांदा है। ए दिवस यूनाइटेड नेशन वल्लों 2021 विच शुरू कीता गया सी। ते दोस्तों, इस दिवस दा उद्देश्य लोकां नू डुबन नाल होण वालियां मौतां अते हादसियां बारे जागरूक करना, ते पानी दे नेड़े सुरक्षा दे नियमां दी पालना करन लई प्रेरित करना है। ते दोस्तों, डुबना एक अजिहा हादसा है ना, जिस तो सही सावधानियां अपना के वड्डे पद्धर ते बचा जा सकता है। बच्चे, नौजवान अते पानी दे नेड़े काम करन वाले लोग इस खतरे दा वध सामना करते हैं। डुबन तो बचन लई आपां नूं तैराकी सीखनी चाहीदी, ते दूजियां नूं भी प्रेरित करना चाहीदा है तैराकी सीखन लई। ते किश्ती जां बोट विच सफर करन दौरान लाइफ जैकेट जरूर पाउणा चाहीदा है, ते बच्चियां नूं कदे भी पानी दे नेड़े कल्ला नहीं छड़ना चाहीदा। बच्चे, नौजवान ते बजुर्गां नूं बाढ़ जां तेज वहा वाले पानी तो दूर रहना चाहीदा है, क्योंकि दोस्तों पानी जीवन दिंदा है, पर सावधानी ही जीवन बचाउंदी है। ते दोस्तों, इस दिन दे नाल अज एक होर दिन मनाया जांदा है, जो कि है वर्ल्ड आईवीएफ डे, जो हर साल 25 जुलाई नूं ही मनाया जांदा है। अज दिन ही 1978 नूं दुनिया दी पहली आईवीएफ राही जन्मी बच्ची लोइस ब्राउन दा जन्म होया सी। इस इतिहासिक उपलब्धि कारण हर साल 25 जुलाई नूं इह दिवस मनाया जांदा है। ते तुसी अज सुनोगे प्रोग्राम युवानी तहत सिलसिला मेरियां गल्लां मेरे गीत, जिस विच मेहमान होंगे आकांक्षा अरोड़ा।
2: नमस्कार श्रोतियो, आकाशवाणी एफएम बठिंडा सुन रहे सारे ही श्रोतियों दा बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम मेरियां गल्लां मेरे गीत विच। अज दा ए प्रोग्राम लेके हाजिर हां मैं डॉक्टर आकांक्षा अरोड़ा। असी अक्सर सुनदे हां कि हर इंसान दी जिंदगी एक किताब वर्गी हुंदी है। इस दा हर सफा एक नवा तजर्बा, एक नवा सबक ते नवी याद आपदे अंदर समेट के रखदा है। अज मैं अपनी उस किताब दे कुछ सफे ते अपनी पसंद दे कुछ प्यारे प्यारे गीत तुहाडे नाल सांझे करन आई हां। फरीदकोट जिले दे पिंड सादिक दी जामपल मैं आकांक्षा पेशे वजो एक डेंटिस्ट यानी दंदा दी डॉक्टर हां। मेरे पिता जी श्री राज कुमार किते वजो किसान हन,

गीत तो बाद एक बार फिर स्वागत है सारे ही श्रोतियां दा। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा ते आज प्रोग्राम चल रहा है मेरियां गल्लां मेरे गीत। तुसी ये प्रोग्राम सुन रहे हो मेरे आकांक्षा अरोड़ा दे नाल। दोस्तों, जिंदगी दे सफर विच जिथे माता पिता सानू तुरना सिखाउंदे हन, उथे ही उस सफर दी दिशा अक्सर साडे अध्यापक तय करदे हन। स्कूल अते कॉलेज दे उस साल सिर्फ पढ़ाई दे नहीं हुंदे, सगों शख्सियत नूं घड़न दे वी हुंदे हन। अज जदों पिछे मुड़ के वेखती हाँ तां महसूस हुंदा है कि मेरियां बहुत सारियां आदतां, मेरे फैसले अते नज़रिया किते ना किते मेरे अध्यापकां दी देन है। जिथे स्कूल ने मैनूं उम्र भर दीआं दोस्तियां, परसनैलिटी डेवलपमेंट, स्टेज नाल प्यार ते खूबसूरत यादां दित्तियां, उत्थे ही कॉलेज दी जिंदगी ने मैनूं एक बेहतर पेशेवर दे नाल नाल एक बेहतर इंसान भी बनाया। गौरमेंट डेंटल कॉलेज विच पढ़दे हुए असी सिर्फ इलाज करना नहीं सिख्या, सगों मरीज दे दर्द नूं समझना अते हमदर्दी नाल पेश आउणा भी सिख्या। कोरोना महामारी दा समां एक ऐसा अध्याय रहा जिसने मैनूं अंदरों बदल के रख दिता। कोविड ड्यूटियां दौरान असी अजिहे लोग वेखे जो शरीरक तौर ते ही नहीं सगों मानसिक तौर ते भी बहुत वड्डे संघर्ष विचों लंघ रहे सन। सच पुछो तां उस समय सेहत कर्मचारी अते विद्यार्थी भी अपने डर, थकावट अते दबाव नाल अंदरों ही अंदर जूझ रहे सन। इसे तरह अज दी तेज जिंदगी विच भी सब अंदरों अंदरी मानसिक परेशानियां नाल लड़ रहे हन। अज साडे नौजवान भी मानसिक तनाव नाल बहुत तेजी नाल क्रस्त हो रहे हन। उसका एक बहुत वड्डा कारण है मोबाइल फोन दी एडिक्शन। अज दे समय विच मोबाइल साडी जिंदगी दा अहम हिस्सा बन गया है, पर जदों इह सहूलत आदत बन जावे तां इह चिंता दा विशा हो जांदी है। अज कई नौजवान घंटियां तक स्क्रीन नाल जुड़े रहिंदे हन। इस दा असर उहनां दी पढ़ाई, नींद, अखां दी सेहत, मानसिक संतुलन अते परिवारिक रिश्तियां ते वी पै रहा है। असी मोबाइल तों किनारा नहीं करना, सगों समझदारी नाल वर्तना सिखना है। इसे तरह नौजवानां विच मानसिक तनाव दे होर कई कारण सानू देखण नूं मिलदे हन, जिवें कि करियर दा दबा, बेरोजगारी या आर्थिक समस्यावां, नींद दी कमी, कसरत ते कुदरत तों दूर होना, दूसरां दीआं उम्मीदां दा बोझ, असफलता दा डर ते होर बहुत कुछ। नौजवानों, मानसिक तनाव कमजोरी नहीं,

0: हो सकता है उसते किसी एक पन्ने ते तुहानु अपनी ही जिंदगी दा कोई जवाब मिल जावे। साहित पढ़न दे शौक ने जद मैनु लिखन वाल तोरिया तब एक समा अजिहा आया जदों मैनु लगा कि जो एहसास मैं किताबां विच लभदी हाँ उन्हां मैनु अपने शब्दां विच वी परोना चाहिदा है। इस तरह लिखना मेरे लिए एक शौक तो वध अपने मन नाल गल्लां करन दा साधन बन गया। मेरा मनना है कि हर इंसान नू अपने जज्बातों नू बयान करन दा कोई ना कोई रस्ता जरूर लभना चाहिदा है। चाहे डायरी लिखो, चाहे चित्र बनाओ, कवितावां पढ़ो या संगीत सुनो, क्योंकि जदों असी अपने मन नू बोलन दा मौका दिंदे हाँ तां उह बदले विच सानू आपदे आप नाल होर ज़्यादा जोड़दा है। मेरी जिंदगी दे अध्यापकां विचों एक अध्यापक समा वी रहा है। समें दे नाल नाल मेरे अंदर सबर ते संवेदनशीलता आई है। अज दी नौजवान पीढ़ी दी सब तो वड्डी चुनौती ही शायद ये है कि असी बहुत छोटी उम्र विच ही अपनी पूरी जिंदगी नू एक तय समय दी कसौटी ते रख दिंदे हाँ। कॉलेज तो बाहर निकलदियां असी सोचते हाँ कि कुछ ही सालां विच सब कुछ साडे मन मुताबक हो जाएगा। मैं भी इस दौर विचों गुजरी हाँ। कई बार लग्या कि शायद मेरी मंजिल हले दूर है या मेरा सफर दूजिया नालों हौली रफ्तार नाल चल रहा है, पर हौली हौली ये समझ आई कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं जिथे हर किसी ने एक समय मंजिल ते पहुंचना होवे। सगों हर इंसान की कहानी वखरी हुंदी है अते हर कहानी का अपना अपना समा हुंदा है। सो दोस्तों, अपनी जिंदगी विच समय सिर हर वो चीज़ सानू मिलेगी जिस दी असी ख्वाहिश रखते हाँ ते जिस वल मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने वर्गे होर नौजवानों नू यही कहना चाहांगी कि अपने सफर की तुलना किसी होर नाल ना करो, अपने किते हुए यतना की कदर करो ते ईमानदारी नाल मेहनत करते रहो। श्रोत्यो, मेरी पसंदीदा किताब नंगे पैरां दे सफर विच लेखक दिलीप कौर टिवाणा जी लिखते हैं कि इतिहास के सफ़ों उत्ते लिखे जाण तों बहुत चिर पहला कुछ लोगों के पिंडियां उपर लिखा जाता है। असी सब अज अपनी अपनी आने वाली जिंदगी का इतिहास अपने पिंडियां ते हंडा रहे हाँ। मैं आप सब की बहुत शुक्रगुजार हाँ जो तुसी मेरी जिंदगी के कुछ सफ़ों नू अज इन्ने प्यार नाल सुनिया। सो दोस्तों, अज लई बस इन्ना ही। हुण मैनू आकांक्षा अरोड़ा नू दिओ इजाजत ते जांदे होए छड़ के जांदे हाँ तुहानू इस प्यारे जे गीत दे नाल। तुसी सुनदे रहो।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नू सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नू बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
3: ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਾਇਲ K9 ਪੈਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਇਲ K9 ਪੈਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਨੀਅਰ ਹੋਟਲ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ, ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 9417357156 ਅਤੇ 9814034858।

0: ਇਸ਼ਾ ਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਇਨ ਰਹੇਗਾ।
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ
0: मुझे प्रेम है तुमसे, मुझे प्रेम है तुमसे, बिना शोर बिना वजह के। जैसे सुबह धीरे धीरे उतरती है और धीरे धीरे ही शाम उतर जाती है। जैसे बारिश चुपचाप भिगा जाती है, वैसे ही तुम भी मेरे दिल में हर रोज उतर आते हो और वैसे ही चुपचाप नैना भिगा जाते हो। बस मुझे प्रेम है तुमसे, बस मुझे प्रेम है तुमसे। जी श्रोतियो, प्रोग्राम शाम सुहानी लैके हाजिर हाँ मैं सुधा। 0164-22-40-331 स्टूडियो का फोन नंबर कर रहा है, तो इंतजार, तो फरमाइशा का इंतजार।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान EMI राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: प्रोग्रामा संबंधी सूचना मिती 26 जुलाई दिन एतवार सवेरे 11 बजे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों नाल सांझी करनगे अपने मन की बात ते उस तुरंत बाद मानयोग प्रधानमंत्री जी दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर पेश किया जाएगा ते पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण ऐसे ही दिन शामी 8 बजे प्रसारित किया जाएगा।
3: जी समा हो चुके शाम दे 7:15 अगले स्रोता फरमाइश लेके रोचक गल्लां बातां लेके साडे कोले पहुंच चुके ने। हैलो
4: आरजे सुधा जी, सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। वड्डे बाई जी दा आशीर्वाद चाहिंदा, की हाल चाल है?
4: बहुत वधिया जी, अपनी दसो।
3: बस जी, सारे भैणां भरावां नाल मुलाकात हो जांदी है, कुछ बच्चे अपने नाल गल करके खुश हो लेंदे, होर अपन नूं की चाहिंदा है।
4: हां जी बस आई ही टाइम नहीं
3: जी। हां जी
4: हां जी,
3: आपां किसे नाल गल करके मन हल्का कर लेंदे आ, कोई अपने।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।

0: स्मार्ट डिसीजन लेने वाले दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नू बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: न टूटना न रूठना न करना कोई बहाना तुम, न टूटना न

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: प्रोग्राम शाम सुहानी, समा हो चुका है शाम दे 7:52। अगले श्रोता अगली फरमाइश रोचक गल्लां बातां। हेलो हेलो
3: हेलो,
2: रेडियो तो दूर हो जाओ जी।
3: हो गए जी?
2: नहीं होए जी, होर बाहर निकले हो जा, रेडियो दी आवाज बंद कर दो।
3: बेबी रेडियो बंद कर दे।
2: सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी, कौन गल कर रहे हो?
3: मैं जी मनवीर कौर गल कर रही हूं जी, पिंड रेके कलां तो।
2: मनवीर जी की हाल चाल ने?
3: वधिया जी, अपने दी सुनाओ।
2: बस सारियां नाल गल्लां बातां करी जानी हूं मैं, तो मजा आ रहा है मेनू खूब सारियां नाल गल बात करके हाल चाल पूछ के।
3: बहुत वधिया गल है जी, असि भी बहुत टाइम दा ट्राई कर रहे हैं, साडा मसा ही फोन लग गया जी।
2: लग गया ना?
3: हां जी,
2: बस ठीक है।
3: अज मैनू बहुत खुशी है।
2: बहुत खुशी है। जो कुछ ओथे सिख के आने हो घरे आपदे खेतां च आपदे पापा नाल कदे डिस्कस कीता है या तुसी कोशिश कीती आपदे वेहड़े च क्यारियां ला के उसे तकनीक नाल तरीकियां नाल सब्जियां उगाउण दी?
3: मैं जी सारा कुछ करदी हां जी, मैं
2: मनवीर थोड़े ना गल करके।
3: धन्यवाद जी।
2: हुण मेनू ए दसो घरे थोनू की कहंदे है? मनवीर कहंदे है, मानी कहंदे है, मानो बिल्ली कहंदे है, की कहंदे है?
3: मेनू जी घरे मनी भी कह दिया, मानो भी कह दिया, मनवीर भी कह दें जी।
2: ठीक है जी, ठीक है, सारिया दी प्यारी बच्ची मनवीर।
3: हां जी,
2: अज मनवीर केड़ा गीत सुनूगे, केड़ा कलाकार चलाइए?
3: तुसी अमरिंदर गिल दा कोई भी लाइट जो सॉन्ग सुना दो जी।
2: लो जी, मनवीर पहुंच गया तुहाडे तक, ते हुण तुसी ए नहीं सोचना भी बहुत औखा फोन मिलदा है, फोन मिल जांदा है।
3: हां जी, पिछले फोन तो तुसी ना जी मेनू ब्लॉक कर रखा सी, पता नहीं क्यों, हुण मैं फोन नवा लिया।
2: हाय रब्बा, हाय रब्बा, मनवीर ए झूठ है, एना नहीं कहिंदा मनवीर, नहीं मिलदा
3: कोई। मैं पिछले आया हुंदा सीगा वी लाइन बिजी ते रिस्ट्रिक्ट कीता होया सीगा जी नंबर।
2: नहीं नहीं बेटा जी, लाइन बिजी तां आंदी ही रहंदी हैगी।
3: रिस्ट्रिक्ट लिखा जांदा सीगा जी,
2: ना जी ना, ना जी ना, मतलब ही नहीं, असि कर ही नहीं सकदे इधरों बेसिक फोन तो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮਿਲਾਇਆ?
3: ਅੱਛਾ ਜੀ,
2: ਬੇਸਿਕ
3: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ?
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
2: ਲਓ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਨਵੀਰ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: जी आज दे प्रोग्राम दी आखरी फरमाइश आखरी कॉल बड़ी हिम्मत नाल बिल्कुल आखरी पलां दे विच साडे कोले पहुंच चुके ने। हेलो
3: हेलो
2: नमस्कार जी।
3: नमस्कार मैडम जी। सश्रीकाल।
2: सश्रीकाल जी। थोड़ा जा रेडियो तो इधर उधर हो जो।
3: हो गई जी, बहुत इधर हो गई।
2: हां जी, नाम दसो की है तोड़ा।
3: लवली जी।
2: लवली राम प्रभु तो ते फोन हाँ पहली बार मिले आज। प्रोग्राम च पहली बार शामिल होए हो, गीत चलाने दा टाइम नहीं हैगा, एने च खुश हो भी रे प्रोग्राम च आके गल हो गई।
3: बड़ा खुश हो
2: गए। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो के खुशी च आवाज ही नहीं निकल रही, गल ही नहीं भुल गए, सारिया सुजनों ही हट गईयां।
3: आई
2: हुंदा आई हुंदा, तुसी मैनु ऑफलाइन कहंदे सीगे पापा दा नाम लेने।
3: हां भोला सिंह बागी जी।
2: जी चलो, वो भी बहुत खुश होने, हर टाइम तुसी उहनां नूं याद रखदे, उहनां दा आशीर्वाद तुहाडे सिर ते बणिया रहे।
3: हां मैं बाहर आ जी, मैं बाहर कम करदा जी, वेल्डिंग दा।
2: हां
3: फादर साहब कर रहे नहीं जी।
2: हां चलो हुण तुसी दुबारा फेर फोन मिलाना है, उदन तुहाडा फेवरेट सॉन्ग चलावांगे। ठीक है,
3: ठीक है जी, गाना मिल गया जी।
2: हुण तां प्रोग्राम खत्म है जी। चलो अगली बार हुण तुसी फोन मिलाओगे फिर आपां गाना सुनांगे। ठीक है,
3: ठीक है जी।
2: जी स्रोते, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडे मोह प्यार लई ते मान सत्कार लई। लवली कहंदे जी मैं इन्ने च खुश हाँ, एक बार मेरी स्रोतियां नाल हाए हैलो करवा दो। तां उम्मीद है असी तुहानू इसे तरह खुशियां वंडदे रहीए ते तुहाडे नाल गल्लां बातां करके असी भी खुश हुंदे रहीए। ते अज हुण मैनू सुधा नू प्रोग्राम शाम सुहानी इत्थे ही समाप्त करन दी दो इजाजत, फिर मिलन दे वादे दे नाल नमस्कार।
4: प्रोग्राम शाम सुहानी।

0: रूठना ना करना कोई बहाना तुम, न टूटना न रूठना ना करना कोई बहाना तुम, मैं हूँ तो सब कुछ है, बस खुद को ये याद दिलाना तुम।
1: ते सिर्फ असी ही नहीं, साडे नाल ने साडे स्रोते प्रोग्राम पैगाम दे विच अपने बेहतरीन खूबसूरत पैगामा दे नाल।
0: बिल्कुल 77173 73 146 ते स्रोतिया ने भेजे सानू पैगाम,
1: ते ए सारे ही भेजे हुए पैगाम प्रोग्राम दे विच शामिल करांगा मैं मनदीप रजौरा ते मेरे नाल
0: दीपा छाबड़ा।
1: सुनना ना भुलना स्रोतियो प्रोग्राम पैगाम, मिति 26 जुलाई सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत।
0: जी बिल्कुल स्रोतियो, अपनी अलार्म घड़ी ते अलार्म ला 26 जुलाई सवेरे 7 बजे प्रोग्राम पैगाम।

दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो, हमने तो फकत ये पूछा था। कितना प्यार करते हो, हमने तो फकत ये पूछा था। आज वाली बारिश की बूंदें गिन लेना, ये जवाब उनका था।

0: का।
1: प्रोग्राम रंगे गजल दी आखरी पेशकश मिताली भुपिंदर दी आवाज सगाई हुई गजल आप सब दी नजर।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न

0: स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क

0: आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1

1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म संजू से। आवाज़ सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल शेखर अस्तित्व के और संगीत विक्रम मोन्ट्रोस का।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

0: बरतने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।
1: अगर मैं पूछूं जवाब दोगे दिल क्यों मेरा तड़

ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

0: आज के फनकार।
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें

0: हिंदी फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।
1: कुछ समझ नहीं आ

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था, और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे, और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर

जय किशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे, लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का।

0: गोपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज, और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।
1: प्यार की राह दिखा दुनिया को, प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोक के

इसके ठीक बाद निर्माता जीपीसीपी ने जीएस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

सन 1963 में जी एस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने वर्षों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूक कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

और फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना।

इसके बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहां एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं, माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहां जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था, माना मेरे हंसी सनम तू रश के महता।

जी.एस. कोहली के संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओ.पी. नैयर के रिदम में दिया वो ओ.पी. नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओ.पी. नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जी.एस. कोहली असल में ओ.पी. नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जी.एस. कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जी.एस. कोहली की अपनी भी शैली है, कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जी.एस. कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्जान का लिखा हुआ है।

60 के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जीएस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संग दिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जीएस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जीएस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है।

25 जुलाई 1996 को जी.एस. कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जी.एस. कोहली चले गए, पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे। कभी हमें रूमानी एहसास से भर देंगे और कभी हमारे भीतर गम का सागर लहराएगा उनके बनाए गाने सुनकर।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जीएस कोहली पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

कहते हैं प्यार की शुरुआत अक्सर एक साधारण सी मुलाकात से होती है। एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी बात और फिर धीरे धीरे दिल उस शख्स के आसपास अपनी दुनिया बसाने लगता है। कभी किसी बारिश भरी शाम में, कभी किसी सुनहरे सवेरे में, तो कभी भीड़ के बीच अचानक हुई मुलाकात में। प्यार चुपके से दिल का दरवाजा खटखटा देता है और जब ये एहसास दस्तक देता है तो साधारण दिन भी खूबसूरत लगने लगता है। वो पहली मुलाकात का पल अपने साथ एक अलग ही एहसास लाता है। वो मुलाकात कुछ खास थी जब पहली बार मिले थे हम। क्या था उस लम्हे में कि धड़कनों ने तेज रफ्तार में आकर कह दिया कि दिल ढूंढ रहा था।

0: इस खास को, वो तुम हो, बस तुम। याद है तुम्हें वो चांद की ठंडी चमकती चांदनी रातें, जब बेहिसाब प्यार लुटाते थे हम एक दूसरे पर। तुम्हारा यूं एकटक देखना और कह उठना कि तुम एक परी सी दिखती हो, इस सारे जहां में बस तुम ही तुम दिखती हो, जिसे सारे दुख सुख कह सकूं, तुम वो एक हमसफर सी दिखती हो।
1: हम सब

कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो तो चुपके से बिन कुछ कहे दिल के किसी कोने में उतर जाता है। पहले एक एहसास बनकर, फिर एक आदत बनकर, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बनकर। पता ही नहीं चलता कि कब किसी की बातें अच्छी लगने लगती हैं, कब उसकी मुस्कान दिन की सबसे खूबसूरत वजह बन जाती है, और कब उसकी मौजूदगी से हर मौसम सुहाना लगने लगता है, जैसे लंबे अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण। उसकी मौजूदगी से मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसके साथ बिताया हर पल किसी खूबसूरत कविता की तरह लगता है, जिसमें शब्द कम और एहसास ज्यादा होते हैं। जब कोई दिल के करीब होता है तो उसकी खुशियां और दुख अपने लगने लगते हैं, और उसके साथ भविष्य के सपने सजने लगते हैं।

प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। किसी के इंतजार में वक्त का ठहर जाना, किसी की आवाज सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाना और बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ लेना, यही तो है प्यार की सबसे खूबसूरत भाषा। ये वो एहसास है जिसमें दो दिल अलग होते हुए भी एक दूसरे की धड़कनों को सुन लेते हैं और खामोशियां भी कह उठती हैं कि मेरे दिल की हर धड़कन का नाम तुम हो, क्योंकि अब हर धड़कन में तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती है। मेरे हर ख्वाब का मुकाम तुम हो।

क्योंकि भविष्य की हर कल्पना में तुम्हारा साथ शामिल है और मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी तुम हो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये कहानी अधूरी है।

जिसके साथ जीवन जीने का अर्थ समझ आने लगता है, जिसके साथ बिताया हर पल किसी खूबसूरत कहानी की तरह लगता है, जिसमें भावनाएं हैं, सपने हैं, इंतजार है और प्यार की वो गहराई है जिसे शब्द पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। कभी-कभी ये डर भी लगता है कि कहीं ये सपना टूट ना जाए, क्योंकि जो चीज दिल के सबसे करीब होती है, उसके खोने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन फिर उसकी एक मुस्कान, उसका एक विश्वास भरा शब्द सारे डर मिटा देता है और दिल फिर से उम्मीदों के आसमान में बेपरवाह सा उड़ने लगता है। और जब जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें, तो लगता है कि जैसे जिंदगी की हर राह, हर मोड़, हर संघर्ष सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए था, जैसे सारी दूरियां, सारे इंतजार और सारी अधूरी दुआएं बस एक उसके मिलने पर आकर पूरी हो गईं।

तुम्हारे मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने अचानक मुझे अपना लिया हो, जैसे बरसों से बंद पड़ी किसी खिड़की से धूप दबे पांव भीतर चली आई हो। उस पल एहसास हुआ कि कभी-कभी एक व्यक्ति का मिल जाना पूरी दुनिया के मिल जाने जैसा होता है। तुम्हारे आने से पहले लोग तो बहुत थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। सपने तो बहुत थे, लेकिन उन्हें साझा करने वाला कोई नहीं था। फिर तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा और हर अधूरा एहसास पूरा होने लगा। अब खुशियां आने की वजह नहीं ढूंढती।

तुम्हारी एक मुस्कान दिल को रोशनी से सराबोर कर देती है। तुम्हारी एक आवाज मन के सारे शोर को शांत कर देती है। तुम्हारा साथ ऐसा लगता है जैसे किसी लंबे सफर के बाद मुसाफिर को अपनी मंजिल मिल गई।

तुम्हारे साथ बिताया गया कोई भी पल साधारण नहीं होता। तुम्हारी बातों में एक ऐसा जादू है जो थके हुए मन को सुकून देता है, जो बिखरे हुए ख्वाबों को फिर से सजाने का हौसला देता है। कभी-कभी तो मन सोचता है कि आखिर प्यार इतना सुंदर क्यों होता है? शायद इसलिए कि वो हमें ये एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमारी खामोशियों को समझता है, कोई है जो हमारी मुस्कानों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को पढ़ लेता है और हमारे हर सुख दुख को हमारे साथ बांट लेता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है, तो मेरा बस यही जवाब होगा, तुम केवल मेरी कहानी का हिस्सा नहीं हो, तुम ही तो मेरी कहानी की खूबसूरती हो, तुम केवल मेरा सपना नहीं हो, तुम तो मेरी सपनों की ताबीर हो। तुम्हारे मिलने के बाद मुझे किसी और चीज की चाह नहीं रही, क्योंकि प्रेम का सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि किसी अपने को पा लेने में होता है।

0: अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ढलती जाए राह।

0: जा रही है
1: दूरियां अब कैसी और शाम जा रही है हमको ढलते ढलते शाम जा रही है
0: आती जाती सांस जाने कब से गा रही